0: A traditional music piece entitled Sa Libis ng Nayon, and that was rendered to us in instrumental version by the late Richard Tan, and was actually used in a fashion show back in the day. We continue to share to you information about the upcoming election, and this is in the many languages that we speak here in multicultural Australia.
1: Handa ka na bang bumoto? Ang halalang pederal ay inihayag na. Kung binago mo kamakailan ang iyong pangalan o tirahan, naglabing-walong taong gulang, o naging isang mamaya ng Australia, kailangan mong i-update ang iyong detalye ng pagpapatala o mag-enroll upang makaboto bago ang ikawalo ng gabi sa Lunes. Bisitahin ang aec.gov.au o kumuha ng enrollment form sa limang tanggapan ng AEC at ibalik ito sa AEC bago ang ikawalo ng gabi sa Lunes. Ang iyong boto ay makakatulong sa paghubog sa anyo ng Australia. Autorisado ng Electoral Commissioner, Canberra.
2: Είστε έτοιμοι να ψηφίσετε? Οι ομοσπονδιακές εκλογές έχουν ανακοινωθεί. Εάν αλλάξατε πρόσφατα το όνομα ή την διεύθυνσή σας, συμπληρώσατε τα 18 ή γίνατε Αυστραλός πολίτης, πρέπει να ενημερώσετε την εγγραφή σας με τα νέα στοιχεία σας ή να εγγραφείτε για να ψηφίσετε πριν από τις 8 το βράδυ την Δευτέρα. Επισκεφτείτε το aec.gov.au ή λάβετε μια αίτηση εγγραφής από οποιοδήποτε γραφείο της Αυστραλιανής Εκλογικής Επιτροπής AEC και επιστρέψτε την στην Επιτροπή πριν από τις 8 το βράδυ την Δευτέρα. Η ψήφο σας θα συμβάλλει στην διαμόρφωση της Αυστραλίας. Εγκρίθηκε από τον Εκλογικό Επίτροπο Καμπέρα.
0: Information in the many languages that we speak here in multicultural Australia, and this is in regards to the upcoming elections.
3: क्या आप मतदान के लिए तैयार हैं? फेडरल चुनावों की घोषणा हो चुकी है. अगर आपने हाल ही में अपना नाम या पता बदला है, आप 18 वर्ष के हुए हैं या आप एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक बने हैं, तो आपको सोमवार को रात 8 बजे से पहले अपने नामांकन विवरण अपडेट करने होंगे या मतदान के लिए अपना नाम दर्ज कराना होगा. aec.gov.au पर जाएं या AEC के किसी भी कार्यालय से अपना नामांकन फॉर्म ले लें और सोमवार को रात 8 बजे से पहले उसे भरकर AEC को भेज दें. आपके वोट से ऑस्ट्रेलिया का स्वरूप बनाने में सहायता मिलेगी. चुनाव आयुक्त कैनबरा द्वारा अधिकृत.
4: 연방 선거일이 발표되었습니다. 최근 개명 혹은 주소 변경을 했거나 18살이 되었거나 호주 시민권자가 된 성인은 월요일 오후 8시까지 본인의 등록사항을 업데이트하거나 선거인 등록을 마쳐야 합니다. ac.gov.au를 방문하거나 AEC 사무소에서 등록 양식을 받아 월요일 오후 8시까지 작성된 양식을 AEC에 제출하세요. 여러분의 투표가 호주의 미래를 만듭니다. 캔버라 선거관리위원회 위원장의 승인을 받았습니다.
5: 您准备好投票了吗？联邦大选的日期已经公布。如果您最近更改了姓名或地址，或刚满18岁，或者新近成为澳大利亚公民，您必须更新自己的登记资料，或在周一晚上8点前登记参与投票。请访问 aec.gov.au 或前往任何一个澳大利亚选举委员会办事处索取登记表，并在周一晚上8点前填好寄回。您的选票将帮助打造澳大利亚的未来。选举专员于堪培拉授权。
6: 98.5 2 000 FM.
0: Resilience and Well-being Radio, sharing to you music for you to be able to just relax at this time and enjoy the moment.

0: 2098.5 FM.
1: Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements.
0: स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में. आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं.
1: रेडियो 2098.5 FM, मल्टीकल्चरल रेडियो.
2: आज रविवार योगाब्द 5126, कलयुग विक्रम संवत 2083, अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 11 अक्टूबर 2026 है. दर्पण के सभी श्रोताओं को संजीव शर्मा, प्रदीप उपाध्याय और अजय गुप्ता का सप्रेम नमस्कार. अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार. मुख्य समाचार इस प्रकार हैं. CJP प्रोटेस्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से ही हिरासत में लिए गए अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका. देश में अस्थिरता पैदा करने की हो रही साजिश, राहुल गांधी और CJP पर बरसे BJP अध्यक्ष नितिन नबीन. भारतीय IT कंपनियों को अमेरिका में बड़ा झटका. नहीं रहे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर, 75 साल की उम्र में गोवा में हार्ट अटैक से हुआ निधन. क्या विराट कोहली ने लिए प्रेमानंद महाराज से मिलने के 5 करोड़, क्रिकेटर की टीम ने बताया सच. सरकार के मुखिया के तौर पर PM मोदी ने के 25 साल, कहा मेरे लिए कर्म ही सब कुछ, वी विल डू इट. एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख, 3,500 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव. अब सुनिए समाचार विस्तार से. दिल्ली पुलिस ने CJP प्रोटेस्ट के लिए मुंबई पहुंचे अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को विमान में ही हिरासत में ले लिया. तीनों को बस में एयरपोर्ट से ले जाया गया. दिल्ली पुलिस के जवान उस विमान में दाखिल हुए जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके दिल्ली आ रहे थे. अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस से कहा कि मैं यहां गिरफ्तार होने आया हूं, मुझे गिरफ्तार कीजिए. CJP ने दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को तानाशाही पूर्ण बताते हुए तीनों नेताओं को तत्काल और बिना किसी शर्त के रिहाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई लोगों की आवाजाही की स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन है. इससे पहले जाने माने यूट्यूबर ध्रुव राठी और CJP की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी और CJP पर देश में अराजकता और अस्थिरता फैलाने का बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि जनता द्वारा नकारे जाने के बाद ये लोग विदेशी ताकतों के इशारे पर साजिश रच रहे हैं. नितिन नवीन ने कहा कि आज देश में बहुत ही खतरनाक और गंभीर स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है. देश की 140 करोड़ जनता, जिसका सुख शांति के साथ भारत के विकास में सहयोग मिल रहा है, उसे अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है. और ये कौन कर रहा है? इसमें 2 अराजकतावादी समूह, जिसमें से एक इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी और दूसरे गुट का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP कर रहा है. उन्होंने कहा कि मैं इन दोनों गुटों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत की जनता पूरी तरह से आपके उन उद्देश्यों को देख रही है और आपकी जो अराजकतावादी प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन इस देश में अधिक अस्थिरता पैदा कर सकता है, आपके यह मंसूबे पूरे नहीं होंगे. अमेरिका में काम कर रहे हजारों भारतीय IT पेशावरों के लिए ट्रंप प्रशासन का नया फैसला चिंता बढ़ाने वाला है. अमेरिकी श्रम विभाग ने इंफोसिस, TCS, विप्रो, HCL, कॉग्निजन और टाटा समेत कई कंपनियों को परम ग्रीन कार्ड कार्यक्रम से निलंबित कर दिया है. माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी और कैपजेमिनी जैसी कंपनियां भी कार्रवाई के दायरे में हैं. ये कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब अमेरिकी प्रशासन H-1B वीज़ा और विदेशी कर्मचारियों से जुड़े कार्यक्रमों में कथित गड़बड़ी और दुरुपयोग की जांच कर रहा है। PERM यानी परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन, अमेरिका में रोजगार के आधार पर ग्रीन कार्ड हासिल करने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। इसके जरिए कोई अमेरिकी नियोक्ता यह प्रमाणित करता है कि संबंधित नौकरी के लिए योग्य अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं है और इसलिए वह विदेशी कर्मचारी को स्थायी रूप से नियुक्त करना चाहता है। मशहूर फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर का गोवा में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। पद्मश्री से सम्मानित अभिनेता के निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर है। नाना पाटेकर को उनके घर पर गंभीर कार्डियक अरेस्ट आया था। लगभग 45 मिनट तक CPR देने के बावजूद उनकी हालत नहीं संभली और उनकी मौत हो गई। उनके पार्थिव शरीर को गोवा से मुंबई लाया जा रहा है। वे तिरंगा, क्रांतिवीर, अब तक 56, अपहरण समेत कई फिल्मों में काम कर चुके थे। पाटेकर को उनके अभिनय के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर पुरस्कार, 2 महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर मराठी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सिनेमा और कला में उनके योगदान के लिए उन्हें 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। वह बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े। मैं उन्हें को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों और चाहने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के वृंदावन स्थित प्रेमानंद महाराज के आश्रम जाने को लेकर फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा द्वारा लगाए गए 5 करोड़ रुपए के आरोपों पर विराट कोहली की टीम ने आधिकारिक बयान जारी कर इसे पूरी तरह झूठा और निराधार बताया है। कोहली और अनुष्का शर्मा की वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के प्रति गहरी आस्था जग जाहिर है। फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा ने सनसनीखेज दावा किया कि विराट कोहली 5 करोड़ रुपए लेकर प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे थे। CM से PM तक सरकार के मुखिया के तौर पर 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों को हम करके रहेंगे, वी विल डू इट का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के मुखिया के तौर पर 25 वर्ष पूरे हुए, यह जनता के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है। 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। मैं आज भारत के लोकतंत्र का, भारत के संविधान का भी वंदन करता हूँ। आज मैं जो कुछ हूँ, जहाँ भी हूँ, जिस दायित्व पर हूँ, उसमें सबसे बड़ा योगदान जनता जनार्दन का ही है। मेरे लिए जनता जनार्दन ईश्वर का ही रूप है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। करीब 4 दशक के अपने लंबे सैन्य करियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में सक्रिय भूमिका निभाई है। वह विभिन्न प्रकार के लड़ाकू और परिवहन विमानों को उड़ाने का व्यापक अनुभव रखते हैं। वह एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट होने के साथ साथ क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी हैं। उनके नाम 3,500 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव है। अपने सैन्य करियर के दौरान एयर मार्शल दीक्षित कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन और सैन्य अभ्यासों का हिस्सा रहे हैं। इनमें ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ऑपरेशन रक्षक, कोप इंडिया और ऑपरेशन सिंदूर शामिल है। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 155,088 रुपए प्रति 10 ग्राम था। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 96.78 रुपए और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की 67.65 रुपए। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त होते हैं।
3: मित्रों, आप सुन रहे हैं दर्पण रेडियो हिंदी प्रोग्राम, जो आप हर रविवार 9 बजे से लेकर 11 बजे तक सुबह सुनते हैं, जो 98.5 FM रेडियो 2000 पर आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं हमारे अतिथि पंकज जैन जी, जिनसे चर्चा होगी एस्ट्रोलॉजी पर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और इसके आज के संदर्भ में इसके जो मतलब रेलेवेंस है उसके बारे में हम खास कर और कैसे शुरू हुई इसके बारे में बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी। और साथ में हमारे संजीव जी और प्रदीप उपाध्याय जी।
4: तो दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप उपाध्याय का स्नेह भरा नमस्कार। उम्मीद है कि आपकी सुबह अच्छी गर्मा गर्म चाय नाश्ते के साथ शुरू हुई होगी। अगले 2 घंटे आपकी सुबह को मनोरंजक जानकारी, संगीत, दिलचस्प किस्सों और थोड़ी सी हंसी से भरने के लिए हम आपके साथ हैं। जी हाँ, आप सुन रहे हैं हमारा प्यारा कार्यक्रम दर्पण रेडियो, जहाँ जिंदगी के हर रंग की झलक मिलती है, कभी ज्ञान की, कभी संगीत की, कभी यादों की, और कभी ऐसी बातों की कि आप कह उठें, अरे ये तो हमको पता ही नहीं था। दोस्तों, आज का कार्यक्रम खास है क्योंकि हम आज लेकर आए हैं मनोरंजन का एक ऐसा पैकेज जिसमें दिल भी है, दिमाग भी है और थोड़ी सी मस्ती का तड़का भी। जैसा कि हमारे सहयोगी अजय जी ने बताया कि हमारे साथ एक मेहमान भी हैं। उसके अलावा हम याद करेंगे हिंदी सिनेमा के दमदार और बेमिसाल कलाकार नाना पाटेकर को। उनका अभिनय, उनका अलग अंदाज और पर्दे पर उनकी प्रभावशाली मौजूदगी हमेशा दर्शकों के दिल में अपनी ख़ास जगह बनाए रखेगी। आज उनके यादगार सफ़र और उनसे जुड़ी बातों का जिक्र करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और आज है 11 अक्टूबर, अमिताभ बच्चन का जन्मदिन होता है ये, और उस पर भी बात होगी। बॉलीवुड के महान शहंशाह और सदाबहार, आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर हम लेकर आएंगे उनसे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा। अमिताभ जी की आवाज़, उनका अंदाज़, उनका अभिनय तो आपने खूब देखा है, लेकिन उनके जीवन का कोई किस्सा ऐसा भी हो सकता है जिसे सुनकर आप कहें, वाह, महानायक की कहानी में तो हर मोड़ पर एक नई फिल्म छुपी है। और सबसे ज़रूरी बात, दर्पण सिर्फ हमारा कार्यक्रम नहीं, आपका भी है। इसलिए रेडियो के पास बैठे केवल सुनते मत रहिएगा, अपनी राय दीजिए, अपने विचार साझा कीजिए और हमारे साथ बातचीत में शामिल हो जाइए। रेडियो का असली मज़ा तभी है जब आरजे अकेले न हो और श्रोता भी कहें, अरे भाई हमारी भी सुनो। तो तैयार हो जाइए अगले 2 घंटों के लिए, जहां होंगे मनोरंजन के रंग, ज्ञान की बातें, बॉलीवुड की यादें, कम्युनिटी की खबरें और हमारे ख़ास मेहमान के साथ ढेर सारी बातचीत। चाय का कप हाथ में रखिए, चेहरे पर मुस्कान सजाइए और रेडियो का वॉल्यूम ज़रा बढ़ा दीजिए। तो मैं हूं आपका आरजे प्रदीप उपाध्याय और आप सुन रहे हैं दर्पण। तो चलिए रविवार की इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ करते हैं एक शानदार अंदाज में, सुनते हैं एक प्रेरक आज का विचार और उसके बाद एक सुंदर सा भजन।
5: हमें याद रहे मनसा वाचा कर्मणा, हम क्या कर रहे हैं, हमारे मन वचन कर्म में कैसी गति है, हमारा स्वभाव प्रकृति अध्यास अभ्यास वाणी व्यवहार विचार हमारी चेष्टाएं, ये सब इन पर एक बार हमारा ध्यान जरूर जाना चाहिए कि वाणी कर्कश न हो, उसमें प्रियतर है, वाणी में छल न हो, हमारी इंद्रियों पर हमारा गहरा अंकुश रहे, अथवा हम कहीं विमुख न हो जाएं धर्म से, सत्य से, शील और नैतिकता से, कहीं सदाचार का हमें अभाव न आ जाए। इसलिए आत्मनिरीक्षण बड़ा आवश्यक है कि हमारी वाणी व्यवहार में प्रियतर है, माधुर्य रहे और हम अर्थ सिद्धि के लिए, लौकिक कुछ आकर्षणों की पूर्ति और प्राप्ति के लिए हम कहीं गलत दिशा में न चले जाएं, उस दिशा में जहां नैतिकता नहीं है, शील और सदाचार नहीं है। तो हमें निरंतर आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए कि हम सही मार्ग पर हैं ना, और यह आत्मनिरीक्षण ही सिद्धि का मार्ग है।

0: श्रोताओं, आशा करता हूँ ये खूबसूरत देवी जी का भजन आप सभी को पसंद आया होगा। और श्रोताओं, आज से नवरात्रि का भी शुभारंभ हो रहा है, तो हमारे सभी सुनने वालों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं एक हमारे स्पॉन्सर का संदेश।
1: करी मास्टर।

0: Curry Master's Complete Curry Mix available at all leading spice shops.
1: तो श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश।
2: तो मित्रों, ज्योतिष विद्या ऐसी चीज है जो हम सभी उससे अछूते नहीं रहते। जीवन के कितने आयाम हैं उसमें, ये पहलू में देखते हैं कि भाई जब से आदमी पैदा होता है या फिर बाद में शादी ब्याह का मौका हो या व्यवसाय हो, जो ज्योतिष विद्या भारतीय संदर्भ में तो उसकी मतलब बहुत महत्व है। तो इसी बारे में हम चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आ जाए हैं पंकज जैन जी, जो इस विषय पे काफ़ी इन्होंने कार्य किया है। तो पंकज जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद अजय जी, और सभी श्रोताओं को, दर्पण रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं आपको अपना तो थोड़ा सा परिचय दे दूँ। मैं भी आप लोगों की तरह यहाँ पे आईटी में काम करता रहा हूँ पिछले 40 साल से, और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काफ़ी सीनियर पोजीशंस पे था, लेकिन मेरा एक झुकाव हमेशा से एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री वगैरह में रहा है। उसका एक कारण ये भी था कि माय फादर इन लॉ वो बहुत अच्छे ज्योतिष हुआ करते थे, और मैंने अपने जीवन में उनकी बहुत सारी प्रिडिक्शंस जो हैं उनको सच होते हुए देखा सुना, तो बहुत उनका इन्फ्लुएंस था। और इसीलिए मैं ऑफ एंड ऑन कुछ ना कुछ पामिस्ट्री, कभी एस्ट्रोलॉजी, कुछ ना कुछ करता रहता था। और पिछले 10-15 साल से कुछ ऑफ एंड ऑन कभी पामिस्ट्री पढ़ना शुरू करा, फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट जो है थोड़ा सा कुंडली की तरफ हुआ, और पिछले 5-7 साल में आई हैव बीन वेरी फोकस्ड इन माय स्टडीज़। और अभी इस साल की शुरुआत में मैंने अपने काम से पूरी तरह से रिटायरमेंट लेके अब मैं फुल टाइम स्टडी कर रहा हूँ। मैं अपने आप को ज्योतिष का एक्सपर्ट नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि मैं तो अभी भी एक स्टूडेंट हूँ और अभी भी इसको जानने की कोशिश कर रहा हूँ।
2: तो पंकज जी से आज प्रोग्राम के दौरान बात होती रहेगी, तो इस बीच में नानक पाटेकर जी के ऊपर भी हम एक थोड़ी सी श्रद्धांजलि दे रहे हैं कार्यक्रम में, तो हम दोनों ही चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो पंकज जी आपसे बात करते रहेंगे। प्रदीप जी, आप कुछ कह रहे थे?
4: जी हाँ, तो जैसा हमने कार्यक्रम के आरंभ में श्रोताओं को बताया था कि नाना पाटेकर जी का 8 अक्टूबर को निधन हो गया, और 75 वर्ष के थे वो। और नाना पाटेकर अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे, और इंडस्ट्री में काफ़ी सम्मान थे। उन्होंने अपना कैरियर शायद थिएटर से शुरू किया था, और उसके बाद वो सिनेमा के एक दिग्गज कलाकार बन गए। और मैं उनके बारे में पढ़ रहा था कि उन्होंने का एक रिकॉर्ड है उनका, कि उन्होंने जो अवार्ड लिया है फिल्म फेयर का, एक कलाकार, एक सह कलाकार और विलेन, तीनों कैटेगरी में अकेले व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड जो है मिला अच्छा हुआ है। तो नाना पाटेकर अपने आप में एक विलक्षण व्यक्ति थे,
1: मतलब ट्रू एक्टर,
4: बिल्कुल ट्रू एक्टर, बिल्कुल
1: जहाँ पे भी डाल दो बस।
4: मैंने देखा है जिन लोगों की बैकग्राउंड जो है स्टेज से होती है, क्योंकि स्टेज में कोई रीटेक्स तो होते नहीं हैं, तो वहाँ पे तो जो नेचुरल आपका टैलेंट है वो दिखता है, और फिर भाई जब सिनेमा में आते हैं तो फिर तो और अच्छा हो जाता है।
2: मैंने भी पढ़ा था कि जो इनके पिताजी जो थे वो स्टेज बहुत उनको इंटरेस्ट था उसमें, तो वो देखते थे पॉज प्ले, तो उन्होंने इंकरेज किया, तो इन्होंने देख देख करके उनकी रुचि जागी, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं भी अभिनय करता हूँ।
4: तो चलिए, उनकी एक बहुत ही एक हिट पिक्चर थी अग्निसाक्षी, और उसका एक खूबसूरत सा गाना आपको सुनवाते हैं, और उसके बाद अपना कार्यक्रम जारी रहेगा।

0: or self-managed superfund accounts and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices. Mention The Open Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website, www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of The Open Radio.
1: तो श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर फोर्ब्स अकाउंटिंग का संदेश।
2: तो श्रोताओं, हमारा नाना पाटेकर के लिए श्रद्धांजलि जारी है। तो अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म अग्निसाक्षी, 1996 की ये पिक्चर थी और इसमें अभिनय किया था मनीष कोइराला ने। तो ये मेरे ख्याल से बहुत से श्रोताओं ने देखी होगी कि उस ज़माने की बड़ी सफल पिक्चर थी और इसमें नाना पाटेकर ने एक जो पजेसिव हस्बैंड जो होते हैं उसका रोल किया था और काफ़ी अच्छी कहानी थी इसकी। और इसके बाद फिर नाना पाटेकर को जो था एक काफ़ी एक सफल अभिनेता के रूप में जो था वो इंडस्ट्री में जाना जाने लगा था। तो अजय जी, और क्या क्या जानकारी आप नाना जी के बारे में?
3: तो वैसे तो हम इनको नाना के नाम से ही जानते हैं, सभी नाना कहते हैं, पर उनका असली नाम जो था वो विश्वनाथ था, विश्वनाथ पाटेकर।
1: अच्छा, वाह।
3: तो वो शायद 3-4 भाई बहन थे। तो देखने में जो ये कहते हैं कि मेरी शक्ल सबसे अलग थी घर भाई बहनों से, तो अपने आप को कहते कि भाई वो उतना सुंदर नहीं था। तो काफ़ी बचपन में उनको डिस्क्रिमिनेशन अपनी ही फैमिली में सहना पड़ा और रिजेक्शन रहना पड़ा, जो उनकी पर्सनालिटी पे बहुत फ़र्क पड़ा। वो कह रहे थे कि ना मैं हमेशा रिजेक्टेड फील करता था, शायद कुछ ना कुछ करना चाहते थे वो। तो इन्होंने पहली पिक्चर जो थी उनकी, जो डेब्यू हुआ था उनका, वो थी गमन, जो 1978 की थी। तो फिर छोटी मोटी पिक्चरें मिली मराठी में, हिंदी में, और जिस पिक्चर ने इनकी पहचान बनाई, जो मतलब इनको रिकॉग्निशन मिला, वो थी परिंदा। और इन्होंने जो है जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स से एक वो भी किया था, पढ़ाई करी थी, जो ये बनाते थे पोस्टर वगैरह बनाते थे। तो वो कह रहे थे एक बार अमिताभ बच्चन के केबीसी में आए थे कि मैं पोस्टरों पे सबकी पिक्चर बनाता था, और जब मेरे पोस्टर पे मेरी पिक्चर लगने लगी तब मुझे लगा कि जो मैं सफल हुआ। तो जो पिक्चर है उनकी जो सब लोग जानते हैं वो हैं अंगार, तिरंगा, क्रांतिवीर, प्रतीकघात, अग्निसाक्षी, खामोशी, अंकुश, मोरा, अब तक 56, अपहरण, और फिर उसके बाद कॉमेडी की पिक्चर आई वेलकम वगैरह। तो इनको जो अवार्ड मिले हैं, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, जो फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, वो 3 पिक्चरों के लिए मिला था। एक थी क्रांतिवीर, एक अग्निसाक्षी और दूसरी खामोशी। वो विलन के लिए भी इनको 3 अवार्ड मिल चुके हैं फिल्म फेयर के, जो हैं अंगार, अपहरण और शक्ति। और सपोर्टिंग एक्टर के भी फिल्म फेयर अवार्ड मिले, जो मिले थे इनको राजनीति, तिरंगा, परिंदा और राजू बन गया जेंटलमैन। तो इन्होंने आर्मी में भी ट्रेनिंग ली है काफ़ी।
2: हाँ, एक्चुअली इनकी आर्मी की ट्रेनिंग के बारे में, जब प्रहार पिक्चर जो आई थी, संजीव जी वो तो देखी होगी आपने, प्रहार पिक्चर इनकी। अच्छा, आप लगता है पुराने दौर की पिक्चरें कम देखते हैं। तो जो प्रहार इनकी एक बड़ी सफल पिक्चर थी, और वो जो उससे बिल्कुल जैसा अजय जी ने बताया, उसके बाद से नाना पाटेकर को लोग जानने लगे कि नाना पाटेकर हैं। तो उस पिक्चर में इन्होंने एक आर्मी के जो ट्रेनर होते हैं उसका रोल निभाया था, और उसमें जो हीरो होता है उसको ट्रेन करते हैं, और वो कहानी जो है उसके इर्द गिर्द है, और वो बड़ी अच्छी कहानी भी थी उस पिक्चर की।
1: तो उपाध्याय जी, मैंने उनकी पिक्चर देखी है, बट आप कोई कंक्लूजन मत निकालना। मैंने अब तक 56 देखी है उनकी, मैंने अपहरण देखी है, तो दूसरा साइड ऑफ नाना
2: बहुत सी देखी भी है, बट प्रहार अवश्य देखिएगा मैं कहूँगा।
1: अच्छा।
2: क्योंकि इस पिक्चर के लिए मतलब ये उनके समर्पण को दिखाता है, क्योंकि उसके बारे में पढ़ा था मैंने कि जब वो ट्रेनर का जब उनको रोल मिला
1: जी,
2: तो वो प्रॉपर आर्मी के उससे उन्होंने कॉन्टेक्ट किया कि मुझको ऐसा रोल करना है, और उसकी जो इनसाइट्स जो होती हैं कि क्या क्या करना होता है, तो प्रॉपर उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा।
1: एक्चुअली कारगिल वॉर में ही एक्चुअली वेंट एंड ही फॉट।
2: हाँ,
3: तो और इनको लेफ्टिनेंट कर्नल का वो भी उपाधि मिली थी।
1: अच्छा,
3: आर्मी से।
2: तो ये उनका समर्पण था। और इनकी जो एक होता ना स्क्रीन प्रेजेंस की, मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ, जो विद्यार्थी जीवन में 80 के दशक की बात बता रहा हूँ, तब किसी एक बी.आर. चोपड़ा की किसी पिक्चर में इनका 5 या 7 मिनट का रोल था, विलेन के रूप में उसमें आए थे। तो जब पिक्चर देख के निकला तो साथ में जो दोस्त होते उनसे मैंने पूछा, यार वो आदमी कौन था, वो जानते हो उसको? बोले नहीं यार, हमने इसको देखा नहीं है। तो मेरी जिज्ञासा थी कि ये कौन बंदा है, क्योंकि इतनी अच्छी प्रेजेंस थी। अच्छा, उस जमाने में गूगल तो था नहीं कि आपको पता कर, काफ़ी समय के बाद जब और पिक्चर आई तो पता चला कि अच्छा वो नाना पाटेकर हैं। तो एक जो होता है ना एक ऑरा जो होता है प्रेजेंस का, कि अपने स्क्रीन से आते ही डिक्टेट कर देते हैं ऑडियंस को, तो वो प्रभाव उनके अंदर था। और एक और अभी विधा मैंने उनकी देखी अभी उनके देहांत के बाद, जो था काफ़ी कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा था, तो एक इंडिया टीवी पे कार्यक्रम आता है आपकी अदालत। तो उसमें वो आए हैं, तो उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी पोइट्री जो है वो पानी के बारे में उन्होंने की है, और इतना अच्छे तरीके से सुनाई है कि लगता है बिल्कुल एक अच्छे पोएट हैं ये। तो उसका एक सेगमेंट जो है हम श्रोताओं के लिए लेके आए हैं, तो चलिए यदि आप संजीव जी चाहें तो श्रोताओं को सुना सकते हैं।
1: जी,
4: अमोल पालेकर ने एक फिल्म बनाई थी थोड़ा सा रुमानी हो जाए, तो उसमें पानी, ये आदमी कहता है अकाल है और मैं बारिश लाऊंगा, 5,000 रुपए दो, सिंबॉलिक था। तो बच्चा पूछता है सच्ची मुच्ची बारिश? तो कहता है हाँ मेरे दोस्त, वही बारिश जो आसमान से आती है, बूंदों में गाती है, पहाड़ों से फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है, कुएं पोखर से मिलती है, खपरेलों पर गिरती है, गलियों में फिरती है, मोड़ पर संभलती है, फिर आगे निकलती है, वही बारिश। ये बारिश अक्सर गीली होती है, इसे पानी भी कहते हैं। उर्दू में आप, मराठी में पानी, तमिल में तन्नी, कन्नड़ में नीर और बांग्ला में इसे जौल कहते हैं। संस्कृत में जिसे वारी, नीर, जीवन, पय, अमृत, उद, अंबू भी कहते हैं। ग्रीक में इसे एक्वाप्यूरा, अंग्रेजी में वाटर, फ्रेंच में एयर और केमिस्ट्री में H2O कहते हैं। ये पानी जब आंख से ढलता है तो आंसू कहलाता है, लेकिन चेहरे पे चढ़ जाए तो रुबाब बन जाता है। कोई शर्म से पानी पानी हो जाता है, और कभी कभी ये पानी सरकारी फाइलों में अपने कुएं समेत चोरी हो जाता है। पानी तो पानी है, पानी जिंदगानी है, इसलिए जब रूह की नदी सूखी हो, मन का हिरन प्यासा हो, दिमाग में लगी हो आग और प्यार की गागर खाली हो, तब मैं हमेशा ये बारिश नाम का गीला पानी लेने की राय देता हूं। मेरी मानिए तो ये बारिश खरीदी है, सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश, सिर्फ 5,000 रुपए में। इससे कम में कोई दे तो चोर की सजा हो मेरी, आपकी जूती, सिर पर मेरी, मेरी बारिश खरीदी है।

0: तो मित्रों, हम आज बात करेंगे ज्योतिष विद्या के बारे में। तो हमारे स्टूडियो में है पंकज जी। पंकज जी, हम सब जानते हैं ज्योतिष विद्या के बारे में। हमारे जीवन में किसी न किसी तरीके से ज्योतिष विद्या का जो है बहुत महत्व रहता है। तो आपकी जानकारी के अनुसार इसका प्रारंभ कैसे हुआ?
1: अच्छा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से सभी लोग हम लोग सभी एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते भी हैं और सुनते भी हैं, उसको यूज़ भी करते हैं। लेकिन आपको हमारी जो इंडियन हेरिटेज है, इंडियन कल्चर जो है ना, बहुत रिच है। और मैं उसको इंडियन कल्चर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उसमें ये नहीं चाहता हूँ कि हम किसी स्पेसिफिक धर्म की बात करें। इंडियन कल्चर का मतलब, हमारा जो इंडियन कल्चर का सबसे पुराना जो कोर शास्त्र या कोर टेक्स्ट जो हैं, उनको कहा जाता है वेद। और जो वेद हैं वही एस्ट्रोलॉजी का कोर बेसिस है। जो हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद हैं, उन्हीं के बेसिस के ऊपर ये एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत हुई थी। हमारे जो वेद हैं उनके अंदर, उनके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको कहा जाता है वेदांग। एक वेदांग है जिसके बारे में जो व्याकरण की बातें करता है, एक वेदांग है जो ये बात करता है कि श्लोकों को कैसे पढ़ना चाहिए, एक वेदांग ऐसा है जो ये बताता है कि श्लोकों को कब पढ़ा जाए। उसी में से एक वेदांग है जिसको ज्योतिष कहा गया, और उस वेदांग को ज्योतिष में वेदों की चक्षु या आइज कहा जाता है। और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट इज़ सपोज टू कि भाई नक्षत्र और ग्रह, उनकी क्या कैलकुलेशंस हैं, उन सब के बारे में, इसके बारे में बताता है हमको ज्योतिष। इसलिए उसको वेदों की आई कहा जाता है या चक्षु कहा जाता है। तो जो ज्योतिषी जो है उसकी शुरुआत हमारे वेदों से है।
0: तो कोई ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने वेदों में, मतलब जिनका नाम आता है, जिन्होंने इस ज्योतिष विद्या की शुरुआत की हो?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल है। अब जैसे महाभारत का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, महाभारत का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, और महाभारत के जो रचयिता हैं उनके बारे में भी पता होगा, वेद व्यास। करेक्ट, बिल्कुल सही। जो वेद व्यास के फादर थे उनका नाम था ऋषि पराशर, एंड ही इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। उन्होंने बहुत जो इसका ज्योतिष का जो मूल शास्त्र जो है, जिसको होरा शास्त्र कहा जाता है, उसकी जो रचना है ऋषि पराशर ने करी थी, एंड दैट इज़ द बेसिस ऑफ द ज्योतिषी। और उसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऋषि हुए हैं, जैसे जैमिनी ऋषि हुए हैं, वराहमिहिर हुए हैं, उनके भी बहुत सारे पुराने शास्त्र हैं जो कि ज्योतिष का एक बेसिस था।
0: तो हमारे जीवन में ज्योतिष का जो महत्व है वो काफी अनादिकाल से चला आ रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अनादिकाल से चला आ रहा है। और अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, तो धीरे धीरे आप ये रियलाइज़ कि ज्योतिषी और सनातन और बहुत सारी फिलॉसफी, जैसे जैन फिलॉसफी जो है, दे आर क्वाइट अलाइंड। अभी जैसे हम आगे बात करेंगे कर्मों की, तो कर्मों का कनेक्शन भी ज्योतिष के साथ में कहीं ना कहीं होता है।
0: ये तो हुई भारतीय ज्योतिष की, पर ज्योतिष तो व्यापक है, पूरे दुनिया में है। तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी जो है ज्योतिष को माना जाता है, ज्योतिष शास्त्र को, तो वहाँ का ज्योतिष कुछ अलग है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अजय जी आपका। देखिए, वेस्टर्न कल्चर में भी ज्योतिषी या साइकिक का उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि इंडिया के अंदर है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कुछ फंडामेंटल डिफरेंस है। हालांकि उनका बेसिस, कोर जो प्रिंसिपल्स हैं, सेम है, लेकिन कुछ फंडामेंटल डिफरेंस है। जैसे कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर सन, सूर्य का जो महत्व है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर मून की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अब जैसे मून का मतलब होता है मन। हिंदी में कहावत है, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर मून की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारी जो कुंडली भी बनाई जाती है, उसके अंदर भी जो एनालिसिस है, उसमें मून का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो वेस्टर्न में और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ये।
0: तो जो एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विद्या कहते हैं, उसका मूल हम यही मान के चलें कि नक्षत्र हमारे जीवन को कंट्रोल करते हैं। मतलब एक तो अपना पुरुषार्थ है, अपना कर्म है, दूसरा ये हुआ कि नक्षत्र है, उनके हम जो है उनके घेरे में हैं, हम उनके कंट्रोल में हैं।
1: देखिए, मेरे ख्याल से ना ये एक बहुत बड़ी मिथ है। मिथ मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ऐसा कहा जाता है, और आप किसी से भी बात करेंगे ना, सब कहेंगे कि मेरा शनि अच्छा नहीं चल रहा है या मेरा मंगल अच्छा नहीं चल रहा है, और उसकी वजह से मेरे जीवन में समस्याएं आ रही हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेना पड़ेगा। देखिए, वैदिक फिलॉसफी या इंडियन फिलॉसफी का जो मूल सिद्धांत है, जो मूल प्रिंसिपल है, वो है रीइंकार्नेशन। अब जब हम रीइंकार्नेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में एक आत्मा है और वो आत्मा एक जीवन से दूसरे जीवन में जाती है। अगर वो आत्मा एक जीवन से दूसरे जीवन में जाती है तो कोई ना कोई ऐसा एक वो बेसिस होना चाहिए जिससे वो ये डिसाइड करेगी कि मेरे को एक लाइफ फॉर्म से दूसरी लाइफ फॉर्म में कैसे जाना है। एंड देयर वहाँ पे हमारे कर्म पिक्चर में आते हैं। तो रीइंकार्नेशन है, हमारी सोल है और हमारे साथ में कर्म है, और कर्मों का ही जो फल है वो हम लोग भोग रहे हैं।
0: नहीं, पर इस बीच में आपने वो नक्षत्र का जिक्र नहीं किया।
1: अभी अभी अच्छा, उस पर भी आते हैं। तो पहले तो हमको ये समझना है कि भाई हमारे साथ में एक आत्मा है और आत्मा के साथ में हमारे कर्मों का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। अब जो कर्म है वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, उसकी वजह से हमें फल मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि नक्षत्र और प्लैनेट्स गिव्स अस इंडिकेशन ऑन कि आपके कर्मों का क्या रिजल्ट इस जीवन में मिलने वाला है। तो जो कुंडली एनालिसिस होती है वो आपको एक इंडिकेशन देती है कि किस तरह के आपके एनवायरनमेंट से आप फेस करोगे इस जीवन में, और वो जो एनवायरनमेंट जो मिल रहा है वो आपके आपके कर्मों की वजह से मिल रहा है। ग्रह और नक्षत्र उसे सिर्फ एक इंडिकेशन दे रहे हैं, वो एक टूल है हमें वो एनालाइज करने में, लेकिन हो जो रहा है वो आपके कर्म और पुरुषार्थ।
2: नहीं पंकज जी, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी, और मेरे ख्याल से विशेषकर ऐसे श्रोताओं के लिए जानकारी अधिक महत्वपूर्ण है जो लोग बिल्कुल ज्योतिष में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। तो इसको एक इस तरीके से समझना एक तार्किक अवलोकन है उसके लिए कि कर्मों का फल है। और हम जो ग्रहों को दोष देते हैं कि अच्छा हमारा शनि खराब है या राहु हमारा जो है वो उसकी दशा चल रही है इसलिए हम दुख भोग रहे हैं, ऐसा नहीं। राहु तो पूरी दुनिया में सबके लिए एक ही दिशा में चल रहा है, वो हर एक के लिए उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। और उसी से एक कई बार जैसे ज्योतिषी लोग बताते हैं जैसे ग्रह शांति के जैसे कि इसी में होता है कि आपका ये ग्रह खराब चल रहा है इसकी आप शांति करा दीजिए, शनि खराब है तो लोहे का दान या किसी काली वस्तु का दान कर दें। तो जो मेरे ख्याल से जिस सिद्धांत को आप बता रहे हैं मेरे ख्याल से इस चीज़ का बहुत अधिक प्रभाव उस पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको तो जैसा चलना है अपने कर्म के फल से तो आप बच के नहीं जा सकते।
1: हाँ बिल्कुल, देखिए अभी ग्रहों की हम बात कर रहे हैं तो एक श्लोक है हिंदी संस्कृत का श्लोक पुराने शास्त्रों में, और वो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, केवलम ग्रह नक्षत्रम ना करोति शुभ अशुभम। मतलब ग्रह या नक्षत्र शुभ अशुभ नहीं करते हैं। ठीक, सर्वम आत्मकृत कर्मम, मतलब जो कुछ होता है वो हमारे अपने कर्मों से होता है। लेकिन लोकवादो ग्रह इति, मतलब लोक में ये कहा जाता है कि ग्रहों की वजह से बुरा हो रहा है।
2: बिल्कुल, बहुत सुंदर जैन साहब, और मेरे ख्याल से एक विज्ञान के छात्र रहे हैं और आपने इतना आईटी के क्षेत्र में कार्य किया है और अब ज्योतिष में कर रहे हैं, तो आप दोनों का संतुलन बनाकर जो है बात का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, अवश्य यह श्रोताओं को पसंद आएगा और हमारे श्रोताओं के भी प्रश्न होंगे हम लेंगे। लेकिन चलिए संजीव जी, श्रोताओं को एक सुंदर सा एक पुराने दौर का गाना सुनवाते हैं।

0: में शामिल हैं इन होम केयर, डिसेबिलिटी केयर और डेमेंशिया व अल्जाइमर सपोर्ट, साथ ही स्पेशल सपोर्ट, एडवाइजरी सर्विसेज और संस्कृति व भाषा के अनुसार विशेष देखभाल। हम 24/7 असिस्टेड लिविंग, रजिस्टर्ड नर्सिंग, रेस्पाइट केयर और हेल्दी एजिंग एक्टिविटीज भी प्रदान करते हैं। हम माई एज केयर, NDIS और प्राइवेट केयर विकल्पों के माध्यम से आपकी पूर्ण सहायता करते हैं। श्री ओम केयर, जहां देखभाल परिवार जैसी लगती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 1300-908-681 या फिर वेबसाइट विजिट करें shriomkare.org.au। धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स और श्री ओम केयर के संदेश।
2: तो मित्रों, पंकज जी से बात जारी है। पंकज जी, जैसा हमने अभी तक बात करा, तो हमारा जो जीवन है जो हमारे पिछले जीवन से प्रभावित होता है, तो पहले हमारे कर्म कैसे हैं,
3: बिल्कुल,
2: और ऊपर से नक्षत्रों का प्रभाव होता है, तो उसमें भी दो बातें हैं। एक तो नक्षत्र वो जो हम पैदा हुए थे, जब हुए थे हम जिस स्थिति में, जैसे कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी मानता है वो 12 मतलब अलग सन साइंस वगैरह होते हैं ना, तो उसमें आपके बर्थ के टाइम से वो गवर्न होता है, आप कहाँ पे वो स्लॉट किए जाते हैं, और ऊपर से किसी प्रस्तुत समय पे नक्षत्र कैसे चल रहे हैं, तो आदमी का जीवन उस टाइम पे कैसे चल रहा है, तो इन सब चीज़ों को आप कैसे जोड़ेंगे?
3: देखिए, आपको इसको अगर समझना है ना, तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा अपना कर्म थ्योरी को समझना पड़ेगा कि कर्म थ्योरी है क्या। कर्म थ्योरी ये है कि हमारे जीवन में हमने आज तक जो कुछ करा वो सारे कर्म हमारी आत्मा के साथ में इकट्ठे हैं। उसको एक टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँ तो उसको बोलते हैं संचित कर्म। संचित कर्म को आप ऐसे समझ लीजिए, आपका बैंक के अंदर बैलेंस है, उसमें आपकी बहुत सारे फिक्स डिपॉजिट्स हैं। कोई फिक्स डिपॉजिट 6 महीने में मैच्योर करेगी, कोई 12 महीने में करेगी, कोई 2 साल में करेगी। तो सारा का सारा जो बैलेंस है आपका, टोटल एक्युमुलेटेड बैलेंस जो है वो आपका संचित कर्म। उसमें से जब आप पैदा हुए उसका एक पार्ट आपकी इस लाइफ में एलोकेशन में आ गया, डिपेंडिंग ऑन आपकी लाइफ लाइन कितनी है। आपकी लाइफ 50 साल की भी हो सकती है, 70 की भी हो सकती है, 90 की भी हो सकती है, 100 की भी हो सकती है। उस हिसाब से वो कर्म आपको मिले, उसको हम बोलते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब ये है कि उन कर्मों के उदय में आपको अपने जीवन में अच्छे या बुरे अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस मिलेंगे। ठीक, अब उसके बाद अगर कर्मों से ही सब कुछ होता है तो फिर हमारी फ्री विल कहाँ गई, हमारा पुरुषार्थ कहाँ गया? इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे कर्म और हमारा पुरुषार्थ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एफर्ट्स जो है हमारे, वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक, एक कर्मों के उदय से हमें सिचुएशन मिलेगी। मेरे कर्मों का उदय था, मुझे ये सिचुएशन मिली। अजय ने बोला कि आप रेडियो प्रोग्राम में आके अपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करो। ठीक, अब उसमें मेरा रिएक्शन ये भी हो सकता था कि नहीं नहीं मेरे को नहीं आना, मेरे को नहीं करना, या ये भी हो सकता है ठीक है मैं आऊँगा, तैयारी करके आऊँगा, आपके साथ में बातचीत करूँगा। तो यहाँ पे मेरा एफर्ट जो है दैट इज़ हैविंग अ प्ले। इसी तरह हमारे साथ लाइफ में जो कुछ हो रहा है, अच्छा है बुरा, वो हमारे पुराने कर्म और प्लस जो हमारे एफर्ट्स हैं उसका कॉम्बिनेशन था। अब इसमें एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आएगी? एस्ट्रोलॉजी ये आएगी कि हम कुंडली को देख के किसी का ये कह सकते हैं कि उसकी लाइफ में अच्छा होगा या बुरा होगा, एंड देन वी कैन प्रिपेयर द पर्सन टू बी रेडी, ताकि उसको वो फेस कर सके।
2: तो फिर ग्रह किस तरीके से कंट्रोल करते हैं आदमी को?
3: देखिए, मेरे ख्याल से हमें ऐसा मानना चाहिए कि ग्रह हमें कंट्रोल नहीं करते हैं, कंट्रोल करने वाला तो मैं ही हूँ।
2: अच्छा,
3: मेरे सामने कोई एनवायरमेंट हुआ, मेरे सामने कोई इंसिडेंट हुआ, मैं उसको कैसे रिएक्ट करता हूँ मेरे ऊपर डिपेंड है। ठीक है ना, अब मान लीजिए मेरे अच्छे कर्मों का उदय है, उसकी वजह से मेरे साथ में मेरे को अच्छा घर मिल रहा है, मेरे को अच्छी फैमिली मिल रही है, मेरे को अच्छे पैसे मिल रहे हैं। अब उसको मैं कैसे यूज़ करूँगा वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, एंड विच इज़ माय फ्यूचर कर्म। तो इसलिए मेरे ख्याल से हम ग्रहों को ही सिर्फ या प्लैनेट्स को ही अकेला उसमें रिस्पॉन्सिबल ना माने, हमारे जो एफर्ट्स हैं, हमारा जो पुरुषार्थ है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दैट इज़ द कंट्रोलर।
2: तो चलिए ज्योतिष पे ही वापस जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस पर मतलब ज्योतिष पे ही बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, हर काम मतलब उसी हिसाब से करेंगे, ज्योतिष के हिसाब से हर उनके स्टेप में जो ज्योतिष गमन होगा और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल

0: कुल विश्वास नहीं करते। तो ये ज्योतिष विद्या आपको मतलब कहाँ पे गाइड करती है?
1: देखिए, इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसे समझिए कि प्लैनेट्स जो हैं दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो अगर मान लीजिए आपके कुंडली में फॉर एग्जांपल कि सूर्य जो है आपका बहुत पावरफुल है, तो सूर्य की जो सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज़ गिविंग यू लीडरशिप क्वालिटी, राइट। अब अगर आप उसको यूज़ करके अपना काम करेंगे, आप ऐसा काम करेंगे कि जिसमें आप लीडरशिप टाइप का काम करें, तो देन यू आर एबल टू यूटिलाइज द एनर्जी जो आपके साथ में है। तो एस्ट्रोलॉजी का जो यूज़ है मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि यू ट्राई टू फाइंड आउट कि जैसे बोलते हैं ना हम लोग स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट स्वॉट एनालिसिस जो बोला जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कुंडली को भी यूज़ करके आप अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए और अपनी एनर्जी अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस को रियलाइज़ करिए और फिर उसके हिसाब से अपना जीवन जो है उसको अलाइन करिए।
0: कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको ज्योतिष विद्या तभी याद आती है जब जीवन में कुछ बुरा घटता है, तो फिर वो सोचते हैं कि चलो यार ज्योतिष विद्या का सहारा लिया जाए, तब क्या अप्रोच होनी चाहिए?
1: बिल्कुल सही कहा अजय जी। मेरे को ध्यान है एक बार हमारे ऑफिस में एक कोई इवेंट था, उसके अंदर हमको बोला गया कि आप अपनी कंपनी के बारे में अपने वर्क के बारे में कुछ अच्छी बातें लिखिए और कुछ ख़राब बातें लिखिए। आप मानेंगे नहीं, वो जो दो लिस्ट बनी थी अच्छी चीज़ों में एक या दो आइटम थे, ख़राब चीज़ों में बहुत सारे आइटम थे। एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोगों को ख़राब चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, अच्छी चीज़ें हम लोगों को याद नहीं रहती हैं। तो आपका बात बिल्कुल सही है कि जब हम मुसीबत में होते हैं उस टाइम पे फिर लोग जाते हैं, क्योंकि आप इसको ऐसे भी समझिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमको ये समझ में नहीं आता है कि भाई मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ फिर भी मेरे साथ ख़राब हो रहा है। तो उस टाइम पर वो जो क्वेश्चंस हैं वी गो टू द एस्ट्रोलॉजर कि ताकि उससे हमको उसका कुछ आंसर मिल पाए, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी जो है इट कैन सर्टेनली हेल्प यू, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने में हेल्प कर सकती है।
2: चलिए पंकज जी, काफ़ी रोचक वार्ता आप हमारे श्रोता निश्चय ही आनंद ले रहे होंगे। तो श्रोताओं, यदि आपके कुछ प्रश्न हो, हमारे साथ ज्योतिष के विशेषज्ञ पंकज जैन जी बैठे हुए हैं, तो आपकी कोई भी जिज्ञासाएं हो या कोई प्रश्न हो तो आप निश्चित रूप से हमारे पास भेज सकते हैं और हम उनको पंकज जी तक पहुँचाएँगे। तो कार्यक्रम में कुछ कम्युनिटी अनाउंसमेंट भी है। तो ट्रिपल एस संगीत संस्कृति सनातन ये प्रस्तुत कर रहे हैं माता के नवरात्रि भजन बाय ऋचा राज एंड टीम, और इसका समय और स्थान नोट कर लीजिए, ये है आगामी रविवार 18 अक्टूबर को, समय है शाम को 5 बजे से 9 बजे तक, और उसके बाद आपको भोजन प्रसाद मिलेगा। ये एक फ्री इवेंट है और स्थान है ग्रेविला रूम वेंटवर्थविल कम्युनिटी सेंटर 2 लेन स्ट्रीट वेंटवर्थविल। और अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप ऋचा जी से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, उनका फ़ोन है 0413-561-293। तो नवरात्रि के अवसर पर जो कि आज ही आरंभ हुई है उसका आनंद लेना हो तो अगले सप्ताह आइए, बहुत अच्छा अनुभव आपको मिलेगा। ऋचा जी की टीम काफ़ी ऊर्जा के साथ जो है प्रस्तुतिकरण करती हैं तो इस कार्यक्रम के लिए। तो संजीव जी,
3: यस
2: बहुत ही रोचक वार्ता रही है इसमें, बिल्कुल मन तो नहीं करता कि बीच में ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन हमको बीच बीच में ब्रेक लेने होते हैं, तो एक सुंदर सा गाना श्रोताओं को सुनवाते हैं।

0: तो दोस्तों, ये गाना सुन के आपको, श्रोताओं को समझ तो आ गया होगा किस पिक्चर की और किस कलाकार की बात हो रही है। अजय जी, आप ही बता रहे थे कि फिल्म सौदागर का गाना है ये, अमिताभ बच्चन की। और ये पिक्चर, संजीव जी, मुझे खुशी है कि ये वाली पिक्चर आपने देखी है, क्योंकि आप बता रहे थे कि ये अमिताभ बच्चन की फिल्म है। और ये पिक्चर, मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी जहाँ तक सही है, अमिताभ बच्चन ने राजश्री फिल्म के लिए सिर्फ एक ही पिक्चर में काम किया है, और वो ये थी सौदागर। और चूंकि राजश्री प्रोडक्शन की, तो जाहिर है संगीत उसमें मोस्ट लाइकली आपका रविंद्र जैन का ही होगा, तो उन्हीं का गीत था ये और उन्हीं का संगीत था। और अमिताभ बच्चन की ये बड़ी अच्छा अभिनय की पिक्चर थी, और हीरो होते हुए भी थोड़ा सा नेगेटिव शेड का रोल था उनका। तो ये अमिताभ बच्चन की अभिनय की क्षमता को जो है वो दर्शाता है। तो जैसा कि आज 11 अक्टूबर है और अमिताभ बच्चन जो हैं आज 84 साल के, 84 लाख योनियों में मनुष्य का जन्म लेकर जो है 84वां जन्मदिवस अमिताभ बच्चन आज मना रहे हैं। तो उनकी एक कहानी एक मैं लेके आया हूँ, जो कि उनके, जिसमें अमिताभ बच्चन के जीवन से जुड़ी हुई है, लेकिन इसमें और भी किरदार हैं जो कि उनके व्यक्तित्व को बारे में बताती है कि अमिताभ बच्चन कैसे व्यक्ति थे। और ये उनके शुरू के दौर की कहानी है, और ये शुरू होती है नरीमन ईरानी, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। यह बहुत ही प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर हुआ करते थे,
1: ये डॉन
0: जी। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, आप मतलब हाँ आप सब जानते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी हिट पिक्चरें जैसे फूल और पत्थर, सरस्वती चंद्र और तलाश जैसी सुपरहिट पिक्चरों में अपनी सेवाएं दी थी। 1972 में शोर फिल्म में काम किया था, और तब से ये मनोज कुमार के संपर्क में आए, और उसके बाद उनकी अगली पिक्चर रोटी कपड़ा और मकान, इसमें भी उनकी दोस्ती अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, मनोज कुमार के असिस्टेंट चंद्र बारोट से हो गई। तो चंद्र बारोट का नाम सुनते ही काफ़ी श्रोताओं को समझ में आ गया हो कि हमारा बात अब किधर जाने वाली है। जी हाँ, फिल्म डॉन की ही बात होगी अब। तो नरीमन ईरानी सिनेमेटोग्राफर के अलावा प्रोडक्शन में भी अपने हाथ आजमा चुके थे। संजीव कुमार, वहीदा रहमान अभिनीत फिल्म जिंदगी जिंदगी बनाई थी, जो फ्लॉप हो गई थी और उसमें उनको काफ़ी घाटा हो गया था। 1975 में उनके दोस्त अमिताभ बच्चन और चंद्र बारोट ने सलाह दी कि आप एक और पिक्चर बनाइए जिसमें हम लोग काम करेंगे, और फीस तभी लेंगे जब पिक्चर मुनाफा कमाएगी। इस तरह डॉन पिक्चर पर काम शुरू हो गया, और इसकी कहानी सलीम जावेद के ठंडे बस्ते में लंबे समय से पड़ी हुई थी, जिसे किसी फिल्म निर्माता ने रुचि नहीं दिखाई थी। उस कहानी को लिया गया और उस पर यह फिल्म बनाई गई। दुर्भाग्यवश इस पिक्चर के रिलीज़ होने से एक साल पहले नरीमन ईरानी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, और प्रोडक्शन का कार्यभार उनकी पत्नी सलमा ईरानी पर आ गया। लेकिन सारे दोस्तों की टीम दोगुने जोश के साथ पिक्चर बनाने में लगी रही, और मई 1978 में इस पिक्चर को रिलीज़ किया गया। यह पिक्चर पहले हफ्ते तो थोड़ा ढीली चली, लेकिन एक बार दर्शकों ने इसको पसंद करना शुरू किया तो फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और उस साल की तीसरी बड़ा बिजनेस करने वाली पिक्चर बन गई। सही मायने में 1978 का साल अमिताभ बच्चन के लिए एक सफल वर्ष ही कहा जाएगा, क्योंकि यदि डॉन तीसरे नंबर पर थी तो दूसरे नंबर पर त्रिशूल थी, और सबसे पहले नंबर पर थी मुकद्दर का सिकंदर। लेकिन डॉन के पर्दे के पीछे की कहानी अलग ही थी, जो उस दौर की दोस्ती और गहराई को दिखाता है। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में इस बात का जिक्र भी किया है कि इस पिक्चर में जब उनको अभिनय के लिए पुरस्कार मिला, तो उन्होंने मंच पर नरीमन ईरानी की पत्नी सलमा ईरानी को बुलाकर अपना पुरस्कार उनके हाथ में दे दिया। अमिताभ बच्चन के अलावा आशा भोसले को भी इस पिक्चर में एक सुपरहिट गाने के लिए पुरस्कार मिला था। तो क्यों ना फिल्म के पर्दे के पीछे की कहानी सुनाने के साथ साथ वह सुपरहिट गाना भी हम श्रोताओं को सुनाएं, जो कि हेलन का एक सिग्नेचर डांस है, और उसमें तड़का लगाने के लिए मैंने कुछ अमिताभ बच्चन और हेलन के संवाद भी जोड़ दिए हैं। आशा करते हैं श्रोता पसंद करेंगे।
2: क्या नाम बताया तुमने?
3: सोनिया।
2: सोनिया, मुझे दो तरह की लड़कियां पसंद नहीं आती। एक वो जो मेरे पास आने में बहुत देर लगाए, और एक वो जो बहुत जल्दी आ जाए।
3: और मैं तुम्हारे पास बहुत जल्द आ गई?
2: चार घंटे पहले हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, और इस वक्त तुम मेरे साथ इस होटल के कमरे में। क्यों?
3: तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे तुम्हारी ही तलाश थी।
2: रोमांटिक बातें मुझे बहुत बोर करती हैं सोनिया।
3: मैं सच कह रही हूँ। इंसान ये जान सकता है कि चांद और सूरज में क्या छुपा है, लेकिन ये कभी नहीं जान सकता कि एक लड़की के दिल में क्या छुपा है।
2: मुझे लड़कियों के दिल से कोई दिलचस्पी नहीं, इसीलिए तो आज तक जिंदा हूँ। Oh God, getting late.
3: एक पैग और बनाओ।
2: Some other time, baby. अब मुझे यहाँ रोकने के लिए बाकी रखा ही क्या है।

0: तो पंकज जी, ज्योतिषी के बारे में बात कर रहे थे, तो एक विषय है जिसमें ज्योतिष हमेशा सामने आता है, वो होती है कि विवाह, बच्चों का विवाह खास तौर पर। तो लोग कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे की शादी कब होगी और क्या से होगी। और दूसरा यह है कि जो एक शब्द सुनने में आता है, मंगल दोष, क्योंकि भाई किसी के मंगल दोष लगा हुआ है। तो इन दो चीज़ों पे आप थोड़े से प्रकाश डालिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला अजय जी। देखिए, ज्योतिष में ज़्यादातर, अब जैसे जो जिन लोगों को मैं थोड़ा बहुत कंसल्ट करता हूँ, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं रिलेशनशिप, मैरिजेस के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर और हेल्थ, ये तीन चार टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। और मैरिज तो ख़ास तौर पे एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि जिसके बारे में क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। और इसके बारे में, मतलब ज्योतिष में, हमारे एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी सारे इसके कॉन्सेप्ट्स हैं कि इसको हम कैसे यूटिलाइज करें। अब ये जो मंगल दोष वाली जो बात है ना, एक ये बहुत बड़ा मिथ कहूँगा मैं थोड़ा सा, या ये कहूँगा कि इसको थोड़ा सा मिसयूज़ ज़्यादा किया गया है। मंगल दोष, ऑफ कोर्स, मंगल के होने की वजह से आपके रिलेशनशिप में थोड़े से चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन हमें ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हमारे जो शास्त्र हैं वो 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, 4000 साल पहले लिखे गए थे। तो उस टाइम पे जो एक मैरिज थी, दैट वाज क्वाइट वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द हस्बैंड। तो वाइफ जो थी, दिस वाज टोटली फाइनेंशियली एंड इमोशनली डिपेंडेंट ऑन हस्बैंड। तो उस टाइम पे जो मंगल दोष की बात की जाती थी, और आज का जो सिचुएशन है वो बहुत डिफरेंट है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इसको हमें ब्लाइंड ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना चाहिए। वी हैव टू बी प्रैग्मेटिक एंड वी हैव टू बी प्रैक्टिकल होना चाहिए इसके बारे में। अब मंगल दोष में फिर साथ में एक ये भी है कि आपके पास कोई आया, किसी ने पूछा, तो इट्स वेरी इजी टू से कि भैया आपको मंगल का दोष है, आप उसके लिए ये उपाय कर लीजिए, उस बहाने मेरी थोड़ी सी फीस भी बन जाएगी, एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ इजी मनी मेकिंग सॉर्ट ऑफ। तो आई थिंक मैं ये कहूँगा कि इसको मंगल दोष को सिर्फ मंगल दोष ना समझ के आप अपने चार्ट को पूरी तरह से एनालाइज करवाइए, और उसमें फिर ओवरऑल जो आपको उपाय करने हो वो उपाय करिए।
0: तो मैं आपको टोक रहा हूँ, तो जो कहते हैं कि लड़की मांगलिक है, तो ये उसी संदर्भ में इसका उपयोग होता है।
1: हाँ, उसी संदर्भ में यूज होता है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि जैसे हम कहते हैं ना कि कोई पर्सन मांगलिक है, अब वो मांगलिक होना अपने आप में इतना बड़ा नेगेटिव फैक्टर नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ही लिखा हुआ है कि मांगलिक दोष कैंसिलेशन के भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। लेकिन जो पुराने या कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जो सिर्फ मंगल दोष की बात करते हैं, कैंसिलेशन की बात नहीं करते हैं, जो मुझे लगता है कि सही नहीं है। हमें पूरी इन्फॉर्मेशन सबको देनी चाहिए।
0: सुनने में ये आता है ना कि अगर लड़की मांगलिक है तो पहले उसकी शादी किसी पेड़ से करवाओ।
1: देखिए, सब सब तरह की विचारधाराएं हैं और काफ़ी जगह पे इस तरह की मान्यता भी है, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ, देखो, मंगल दोष और एक आपने सुना होगा कुंडली मिलान। मैं बहुत सारे ऐसे केसेस जानता हूँ जिसमें कि कुंडली मिलान में उनके जो पॉइंट्स हैं वो 5 या 6 हैं, बट दे आर हैविंग वेरी सक्सेसफुल लाइफ और मैरिड लाइफ उनकी बहुत अच्छी है। कुछ ऐसे भी कपल्स हैं जहाँ पे उनके जो पॉइंट्स थे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उनके अंदर डिवोर्स भी हो गया। तो सिर्फ वो एक ही एलिमेंट के ऊपर पूरा का पूरा रिलेशनशिप बेस करना सही नहीं है।
0: गाइड करता है,
1: हाँ, वो
0: जी
1: एक
0: कहें।
1: गाइड करता है, एक गाइडेंस दे सकता है। मंगल दोष को आप ऐसे समझिए कि उसकी वजह से हो सकता है थोड़े से चैलेंजेस हों, लेकिन आप उनको ओवरकम करा जा सकता है।
2: तो पंकज जी, आपने जो अभी बताया कि जैसे कुंडली मिलान होता है, तो उसमें जैसे आपने बताया कि विरोधाभास मिलता है कि कम गुण मिलते हैं और बहुत अच्छा संबंध चल रहा है, और उसका विपरीत भी होता है। तो यहाँ पर एक एक मूल प्रश्न यहाँ पर ये भी आता है कि कुंडली जो हम मिला रहे हैं वो कितनी सही है, और वह निर्भर करता है जातक के जन्म समय पर,
1: बिल्कुल
2: तो कि जन्म का समय कितना एक्यूरेटली रिकॉर्ड किया गया था, तो उसके हिसाब से आप जन्मपत्री बनाते हैं। लेकिन इस संदर्भ में एक जो कि आधुनिक सत्यता है कि आजकल काफ़ी बर्थ जो हैं वो सिजेरियन होती हैं, और सिजेरियन एक आपकी ह्यूमन कंट्रोल्ड इवेंट है, क्योंकि आजकल तो हमने देखा है कि कपल्स जो हैं वो अपना सिजेरियन प्लान करते हैं कि अच्छा नहीं, सब वीकेंड में करिए, सैटरडे को फ्री हैं हमारे सब लोग होंगे, और उस दिन आप सर्जरी करिए, तो डॉक्टर 2-3 दिन का फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि चलिए फ्राइडे कहें तो फ्राइडे कर दें। तो उस हिसाब से अगर अगर बर्थ टाइम को अगर इस तरीके से ह्यूमनली कंट्रोल किया जा रहा है, तो उस समय के आधार पर बनाई हुई जन्मपत्री की क्या प्रामाणिकता है कि वह सही है, तो यह मूल प्रश्न जो है उठता है। और अगर वह गलत है तो उससे भले ही जन्मपत्री का जो मिलान की जो हम बात कर रहे थे, लेकिन जब मूल जन्मपत्री ही अगर गलत समय पर बनी गई है तो फिर उसकी कोई तार्किकता नहीं रह जाती। तो इस संदर्भ में आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे?
1: देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है उपाध्याय जी की। पहली बात तो यह है कि इस पॉइंट के ऊपर भी बहुत डिबेट है कि जन्म का टाइम क्या लिया जाए, क्योंकि जन्म के टाइम के बारे में भी तीन चार स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट यह है कि जैसे ही बच्चे का शरीर माँ के गर्भ से बाहर निकलना शुरू करता है उसको टाइम बोलते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब उसकी नाड़ी का जो काटा, नाभि का जो कनेक्शन है उसको काटा जाता है वो जन्म है, या फिर कुछ ये लोग ये कहते हैं कि जब उसने पहली सांस ली तब नया जन्म है। तो उसमें भी काफ़ी डिबेट्स हैं। और फिर दूसरी बात जो आपने उठाई सिजेरियन वाली ना, वो एक बहुत बड़ा, आज की तारीख में काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि किसी ज्योतिषी के पास गए, उससे पूछा कि भाई मेरा बच्चा जो है एक्स तारीख को हो रहा है तो उसके आसपास कोई अच्छा सा शुभ मुहूर्त बताओ, वो कुंडली वगैरह बना के उसके हिसाब से वो बता देते हैं कि आप 10 बजे करवा लीजिए, 3 बजे करवा लीजिए, 4 बजे। लेकिन मैं आपको बताऊँ, देखिए जो हमारी कर्म थ्योरी है ना, दैट कम्स इन टू द प्ले। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहाँ पे ज्योतिषी ने उनको टाइम बताया, उन्होंने वो सब कुछ प्लान करा, पता लगा उस टाइम पे डॉक्टर जो था वो हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाया और बच्चे का जन्म जो है वो उससे 10-15-20 मिनट के बाद हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें, एक पुरानी कहानी है, रावण ने अपने मेघदूत के जन्म के टाइम पे उसने कोशिश करी थी कि सारे के सारे ग्रह एक जगह आ जाएँ ताकि उसका बेटा जो है अमर हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो तब भी नहीं हुआ और अब भी नहीं होगा। लेकिन यह है कि ठीक है, कोशिश करी जा सकती है, कुछ लोग कोशिश करते हैं, बट अल्टीमेटली तो आपके कर्म और आपके जो एफर्ट्स हैं उसका कॉम्बिनेशन जो है दैट इज़ गोइंग टू गिव यू, आपको रिजल्ट जो है उसी के हिसाब से मिलेंगे।
2: चलिए, बहुत सही उदाहरण के साथ आपने जो है वो समझाया।
0: एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा, जैसे पेरेंट्स होते हैं, एक बड़ी एंग्जाइटी होती है कि बच्चों की शादी नहीं हो रही है, तो ज्योतिषी के पास जाते हैं कि आप बताइए कि भाई कब होगी शादी, क्या है, तो उस मामले में ज्योतिष हेल्प कर सकता है?
1: देखिए, ज्योतिष जो है हेल्प कर सकता है इन द सेंस कि हम कुंडली देखकर ये एनालाइज कर सकते हैं कि उसकी, पहली बात कि उसकी कुंडली में शादी का योग है कि नहीं है, ये बताया जा सकता है। ये भी बताया जा सकता है कि उसकी शादी की कुंडली, उसकी कुंडली में शादी के योग का टाइमिंग क्या है, वो भी हम थोड़ा बहुत इंडिकेशन दे सकते हैं। लेकिन शादी होगी या नहीं होगी उसमें अगेन आदमी का अपना एफर्ट, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, एक दो कुंडली मेरे पास भी हैं जहाँ पे कि उनकी कुंडली में बहुत स्ट्रॉन्ग योग है लेकिन पर्सन ने डिसाइड करा कि नहीं मेरे को शादी करनी ही नहीं है। तो इट कैन डेफिनेटली गाइड यू, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन तो जो पर्सन है उसका ही है।
2: चलिए, काफ़ी रोचक वार्ता है और हमको बड़ी खुशी की बात है। इस स्टूडियो में पहले भी कई ज्योतिष के जो है विशेषज्ञ आ चुके हैं, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक लंबे समय के बाद हम एक ऐसे व्यक्ति को आज देख रहे हैं यहाँ पर जिस जो विज्ञान और जो हमारा जो वेदांत है उन दोनों के बीच संतुलन मिला के हर चीज़ को तार्किक रूप से स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। आशा करते हैं वार्ता निश्चय
3: वो है और सिडनी के पुराने रहने वाले हम लोग के दोस्त हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, कम्युनिटी अनाउंसमेंट जारी रखते हैं। एक और है, कुटुंब परिवार जो है वो माता की चौकी आयोजित कर रहा है, इसमें भी माता के भजन और डिवोशनल सॉन्ग्स होंगे। भजन सिंगर सत्यम जो है वो उस दिन रहेंगे, तो सत्यम के भजन आपको सुनने को मिलेंगे। और ये है 17 तारीख को ऋचा जी का कार्यक्रम होगा, अभी हमने बताया था, यह है उससे अगले रविवार को 25 अक्टूबर को, समय नोट कर लीजिए 5 से 8 बजे तक, और स्थान है हार्वे लो पवेलियन कासल हिल में। और इसके लिए अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो राज गर्ग जी से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, फ़ोन नंबर है 0411-766-170। तो ये 2 हफ्ते तो बिल्कुल दशहरे का समय आने वाला है, तो नव दुर्गा चल रहे हैं, तो बिल्कुल माता की चौकी और माता के भजनों को ही समर्पित रहेगा। आशा करते हैं श्रोता लोग आनंद लेंगे। चलिए, करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। संजीव जी,
3: जी,
2: भारत में UPI पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा, तो आपने कभी UPI यूज़ किया है?
3: मैंने चांस है कि बस पिछले हफ्ते ही इस्तेमाल किया UPI।
2: अरे वाह, तो इस मामले में काफ़ी विशेषकर हमारे जो NRI श्रोता हैं उनको भ्रांति रहती है कि UPI सिर्फ भारत के नागरिक ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपके पास भारत में अकाउंट है तो एनआरई और एनआरओ दो प्रकार के अकाउंट होते हैं, तो मोस्ट लाइकली एनआरओ अकाउंट अगर आपका आपने पेयर कर रखा है अपने मोबाइल से तो आप यूपीआई यूज़ कर सकते हैं, और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपकी आने अगली भारत यात्रा बहुत ही सुगम होने वाली है। इसको मैं आपको अभी से बता सकता हूँ, क्योंकि हर जगह आप बस क्यूआर कोड, मैंने तो पिछली यात्रा में इसको उपयोग किया था, बहुत ही सुविधाजनक है। बस का टिकट लेना हो कहीं भी, इवन आपको रिक्शे वाले को पे करना हो, उसके पास क्यूआर कोड है, आप पे कर दीजिए, कोई चिल्लर का संकट नहीं, कोई किसी तरीके का नहीं, तो ये बहुत अच्छी सुविधा है। लेकिन इसमें अभी पिछले दिनों भारत सरकार ने उसमें कुछ टैक्स जो है, टैक्स नहीं है वो, एक्चुअली वो फीस है जो है वो लगा दी है
3: जी।
2: और कुछ ऐसा है कि 2000 तक के तो फ्री है, तो 2000 से ऊपर का है तो शायद 0.4%, लेकिन
3: वो भी कैप्ड है,
2: हाँ शायद 300 रुपये या कुछ ऐसा
3: ऐसी कुछ हाँ, कैपिंग है,
2: कैपिंग है, और वो शॉपकीपर को देना होगा, यूज़र के ऊपर नहीं होगा। लेकिन इससे जो है एक लोगों में शंका आ रही है कि बड़ी मेहनत करके हम लोग कैश से जो है वो डिजिटल पेमेंट की तरफ गए थे, तो कहीं ये चीज़ जो है वापस लोगों को डिजिटल की ओर तो नहीं ले जाएगी, क्योंकि अब 2000 से ऊपर का पेमेंट होगा तो शॉपकीपर को लगेगा कि अरे मुझे अपनी जेब से कुछ देना होगा
3: तो
2: आप कैश ना ले लूं, या फिर पता लगा कि 3000 का पेमेंट है तो कहेगा 1500 के दो पेमेंट आप कर दीजिए, तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो थोड़ा
3: बट उपाध्याय जी कन्वीनियंस भी कितना है, दुकानदार बस वो टूं सुनता है उसको समझ में आ जाता है कि मेरा पैसा आ गया, न गिनना है न कुछ वापिस देना है, तो उतने देर में वो दो ग्राहकों को और सर्व तो जरूरी नहीं है।
2: बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है, मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि जो कैश हैंडलिंग होती है सर उसकी भी कॉस्ट होती है कि आप कैश गले में हैंडल कर रहे हैं, पता लगा कोई श्रोता आपको वो गला सड़ा हुआ नोट देगा जिसे बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, तो पता लगा वो चपत तो दुकानदार को ही लगेगी,
3: उसे प्लस पैसा खोने का चांस,
2: चुरा लिया किसी ने, चुरा लिया लाइन में लगी है बैंक में उस कॉस्ट की, तो कुल मिला के मेरे ख्याल से एक सही संतुलन है। इस मामले में एक बड़ा चुटीली प्रस्तुति एक मुझे मिली, तो यदि आपकी संजीव जी अनुमति हो तो सुनाऊं।
3: बिल्कुल,
2: तो मेरा एक मित्र बता रहा था कि शादी के बाद मैं पर्स में हमेशा ठीक ठाक कैश रखा करता था ताकि बार बार ATM के चक्कर ना लगाने पड़े, लेकिन न तो कभी पैसे गिन कर रखे और न ही रोज़मर्रा का कोई हिसाब रखा। जैसे जैसे महीने बीतते जा रहे थे खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे, पर्स से 500-500 के नोट यूं खत्म हो रहे थे जैसे संसद से शिष्टाचार। एक दिन मैंने गिनकर रखे 500 के पूरे 10 नोट, दूसरे दिन गिना तो सिर्फ 6 बापू ही बचे थे। अब मेरा शक यकीन में बदल गया, तो ढूंढना शुरू किया, दराज, मेज, अलमारी, दुकान, सब खंगाल मारा। फिर अचानक कुछ सूझा, पत्नी का श्रृंगारदान खोला तो कई सारे हरे हरे बापू के छपे नोट मुंह में फाउंडेशन चुपड़े मुस्कुरा रहे थे, जिनको आज़ादी की लड़ाई में सजने संवरने का मौका न मिला वो बेचारे बुढ़ापे में शौक पूरे कर रहे थे। श्रीमती जी ने नोटों की मेरे पर्स से श्रृंगारदान की इस दांडी मार्च को सिरे से नकार दिया, बताया कि ये सारे पैसे उनके हैं जो उनकी मौसी की बुआ की फुफेरी ननद ने मुंह दिखाई में दिए थे। खैर, मैंने नोट के सीरियल नंबर मैच किए, सिद्ध हुआ कि जो 6 बापू मेरे पर्स में आराम फरमा रहे हैं उन्हीं के 4 सगे भाई यहाँ श्रृंगार बॉक्स में नज़रबंद हैं। इस जासूसी तफ्तीश के बाद भी केस तो मैं हार ही गया, लेकिन मर्द बंदा आगे के लिए सबक ले लेता है, सो मैंने उस रोज़ से कैश के प्रति सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिया, ना नोट रखें और ना गबन होए। इसका परिणाम यह हुआ कि घर में असह्य आंदोलन चल पड़ा, कई गोलमेज सम्मेलनों के बाद दोनों पक्ष सहमत हुए, अब से सैलरी मिलने पर कुछ टैक्स गृह मंत्रालय के हवाले किया जाएगा और बजट में इसका हिसाब मिलने की कोई उम्मीद नहीं रखी जाएगी। मैं देख पा रहा हूँ कि UPI पर टैक्स की खबरें सुनकर पत्नी समाज में फिर से एक बार खुशी की लहर है कि चलो कैश डीलिंग शुरू हो गई है। कल पड़ोस की महिलाओं में चर्चा चल रही थी कि अच्छे दिन वापस आने वाले हैं, जिससे हम और आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला फैसला समझ रहे हैं, महिला मंत्रालय में उसे मास्टर स्ट्रोक समझा जा रहा है।
3: सही,
2: अब समझ में आ रहा है कि सालाना 2.5 लाख करोड़ का मुफ्त राशन बांटने वाली सरकार यूपीआई के 20,000 करोड़ के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ी है? आफ्टर ऑल फाइनेंस मिनिस्ट्री भी तो एक महिला के ही हाथ में है।

0: Curry Master's Complete Curry Mix available at all leading spice shops.
1: श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश।
2: तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी रेडियो प्रोग्राम। आप इसे सुन सकते हैं हर रविवार सवेरे 9 बजे से 11 बजे तक, और इस 2 घंटे में हम लोग आपके सामने एक मनोरंजक प्रस्तुति रखने का प्रयास करते हैं जिसमें ज्ञान का भी समावेश हो। और हम अपने इसके लिए अपने मेहमान और विशेषज्ञों को भी बुलाते हैं अपने स्टूडियो में, और ऐसा ही आज है। पंकज जैन जी हमारे साथ उपस्थित हैं जो कि ज्योतिष विज्ञान के बारे में हम सबको बता रहे हैं, और आशा कर रहे हैं श्रोता उससे निश्चय ही लाभ ले रहे होंगे। पंकज जी, एक सामान्य प्रश्न जो हमारे श्रोता जो इस विशेषकर इस विषय में रुचि रखते हैं, तो अगर जैसे कोई इसको सीखना चाहे तो उसके लिए आप सबसे, क्योंकि आप यह समस्या कभी आपने भी जीवन में फेस की होगी कि कैसे करना है, क्योंकि इसका कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम तो मेरे ख्याल से कुछ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शायद ज्योतिष विज्ञान की कुछ शिक्षा दी जाती है, लेकिन उसके अलावा और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में अभी ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो जितने सामान्यतः मैं ज्योतिषियों से मिला हूँ जिन्होंने किताबों से पढ़कर या किसी से सीखकर ही इस विद्या को अर्जित किया है, लेकिन आज के दौर में अगर कोई अगर इसको इसमें रुचि रखता है और कुछ सीखना चाहता है तो आप उनके लिए क्या सलाह देंगे?
3: उपाध्याय जी, देखिए मैं आपके बात से, मतलब ये क्वेश्चन जो है काफ़ी रिलेटेबल है, क्योंकि जब मैंने, हालांकि मेरे फादर इन लॉ तो यूज़ करते थे, वो उन्होंने मेरे को कुछ बुक्स वगैरह भी बताई, लेकिन उस टाइम पे मैंने उनकी गाइडेंस बहुत ज़्यादा नहीं ली, और बाद में जब मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ, कोशिश करी, तो इट वाज़ ए स्ट्रगल। क्योंकि क्या है कि आज की तारीख में पिछले लास्ट 5 ईयर्स में ना एस्ट्रोलॉजी हैज़ बिकम सडनली बहुत पॉपुलर हो गई है, और हर एस्ट्रोलॉजर ने अपना स्कूल भी खोल रखा है, तो आपको 2-2 महीने के 3-3 महीने के ऐसे वीडियो कोर्सेस यूट्यूब पे ऊपर बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। लेकिन अब आपको, अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो पढ़ाई करने में, तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाहते हो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करिए कि वो किस तरह का उनका करिकुलम है और किस चीज़ों को सिखाते हैं। क्योंकि क्या होता है, एक तो आप एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स के बारे में पता कर लें, उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता कर लें, और उसको आप प्रिडिक्शन करना शुरू कर दें, इट्स वन। दूसरी चीज़ ये है कि आप शास्त्रों को पढ़ें, उससे समझें, बेसिक फंडामेंटल को समझ के उसको एक एज ए विद्या एक्सेप्ट करिए। मेरा ये मानना पर्सनल कि ज्योतिष जो है एक विद्या है, ये एक प्रोफेशन मतलब कम है, ये विद्या जाता है। इसमें आपको एक स्पिरिचुअलिटी भी इन्वॉल्व करनी होगी, इसमें आपको एक साइंस भी इन्वॉल्व करनी होगी, उनका सबका कॉम्बिनेशन करना होगा। अब जैसे मेरा अपना पर्सनल नज़रिया यह है कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी से लोगों को भला करना है। मेरा एक एम है कि मैं इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि लोगों को एस्ट्रोलॉजी के एज ए गाइडिंग टूल यूज़ करा जाए, रादर देन एज ए ब्लाइंड फेथ। तो मेरी सबसे बड़ी एडवाइस तो यही होगी कि आप इंस्टीट्यूट को एक्सप्लोर करिए, उसको इन्वेस्टिगेट करिए, और जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स हैं बड़े बड़े पुराने उनसे ही जाके आप इसको पढ़ाई सीखिए।
2: चलिए, बहुत सुंदर जानकारी दी आपने। और यदि हमारे कोई श्रोता जिज्ञासु हैं और अगर आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहें, तो यदि आप उचित समझें तो अपना नंबर दे सकते हैं, वो आपको मैसेज कर सकते हैं और आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं।
3: हाँ बिल्कुल, मैं आपका अपना नंबर जो है वो शेयर कर दूंगा दर्पण के प्रोग्राम के थ्रू, एंड
2: ठीक है, तो बिल्कुल बहुत सुंदर। अच्छा, इसमें एक प्रिडिक्शन के बारे में ज्योतिषी लोग आपस में करते हैं कि एक होती है महादशा के थ्रू प्रेडिक्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति की, जैसे इस समय मंगल की महादशा चल रही है या राहू की महादशा चल रही है, और उस ग्रह की उसकी जन्मपत्री में जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार जो है उसका प्रिडिक्शन देते हैं कि अभी राहू की दशा जो है वो 12 वर्ष चलेगी, या जो भी उसका समय निश्चित होता है, तो ये समय आपका ऐसा गुजरेगा, फिर अंतर दशाएं चलती हैं। तो एक तो ये तरीका होता है, दूसरा एक होता है फलित ज्योतिष होता है कि वो ग्रह जो है इस समय वर्तमान दिशा में आपकी किस राशि में भ्रमण कर रहे हैं। तो ये इन दोनों में किसका, चूंकि आप इतना अनुभव है, इतनी जन्म पत्रियाँ आपने देखी हैं और आपने खुद इतने प्रेडिक्शंस किए होंगे, तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से किसका अधिक महत्व है, या विशेष परिस्थितियों में एक अधिक उपयोगी होता है दूसरा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
3: देखिए, ये दो चीज़ें हैं ना, मेरे ख्याल से आप जो बात कर रहे हैं, एक तो दशा, ज्योतिष के अंदर एक सीधा सिद्धांत है कि आप किसी का चार्ट देख के उसमें एक प्रॉमिस पता करते हैं, उस प्रॉमिस का जो फ्रक्टिफिकेशन है वो दशा में होगा, और दशा के साथ में ट्रांजिट भी इन्वॉल्व होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप सिर्फ दशा सिस्टम को ले रहे हैं, ट्रांजिट को नहीं देख रहे हैं, गोचर को नहीं देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको सब चीज़ों को मिला के ही वो करना पड़ेगा। जो आज की तारीख में जो डिफरेंसेस हैं, एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, एक केपी एस्ट्रोलॉजी है, एक बृहदनारी है, बहुत सारे तरह तरह की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उनके बीच में थोड़ा सा कॉम्पिटिशन हो सकता है। लेकिन विद इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर फलित और जो ट्रांजिट या गोचर जो है और या फिर जो महादशा है, वो सब दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम।
4: तो पंकज जी, अगर अलग अलग ज्योतिष शास्त्री हैं तो उनकी जो प्रेडिक्शंस हैं, उनका जो ज्ञान है और उस पर जो असर पड़ेगा सामने वाले पे, तो फर्क पड़ता है। जैसे कि ये समझ लीजिए कि कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहाँ पे भी 5 जज की जो है वो बेंच बैठती है, तो 3 कुछ कहते हैं, 2 कुछ कहते हैं। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी ऐसे है कि जो हम 5 लोगों से कंसल्ट करें, 3 से कंसल्ट करें और देखें कि मेजॉरिटी क्या बोल रही है।
3: देखिए, मेरी जो एडवाइस तो ये होगी कि आप 5 लोगों से कंसल्ट ना करें, 1 से कंसल्ट करें, उसके ऊपर भरोसा रखें। क्योंकि आप जितने ज़्यादा डॉक्टर्स के पास जाएंगे उतने ज़्यादा आपका ट्रीटमेंट जो है कन्फ्यूज हो जाएगा।
4: अच्छा, 2 शब्द हैं जो लोग सुन करके बहुत घबराते हैं ज्योतिष शास्त्र में। एक है 7.5 और दूसरा सर्वदोष।
1: काल सर्वदोष।
4: हाँ
3: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है अजय जी आपका। 7.5, यहाँ पे भी 3-4 लोग जो बैठे हैं आप लोग, अगर मैं 7.5 की बात करूँ तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि अच्छी चीज़ है या खराब चीज़ है? ज्यादातर लोग 7.5 का नाम सुनते ही
1: एक्चुअली याद, या तो वो है कि वो याद 7.5 तभी करते हैं जब पूरा वक्त चल रहा होता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 7.5 का क्या है, इट इज वन ऑफ द हाईली मिसयूज्ड टर्म। ये एक ज्योतिषी के लिए बहुत आम है कि लोगों को कोई उसके पास आएगा, नेचुरली लोगों का डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, उसीलिए लोग ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो कहेगा कि भाई आपका 7.5 चल रहा है इसलिए आपके साथ में सब बुरा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, 7.5 लोगों के लिए बहुत अच्छी भी हो सकती है। आप लोग सरप्राइज होंगे, नरेंद्र मोदी 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उनकी 7.5 चल रही थी। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी 78-79 में, तब भी उनकी 7.5 चल रही थी। मोरारजी देसाई जब प्राइम मिनिस्टर बने 7.5 में, अमिताभ बच्चन का अभी हम लोगों ने बात करी थी, अमिताभ बच्चन का कुली के सेट के ऊपर जब एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे उनकी 7.5 थी, लेकिन उसी 7.5 में वो रिकवर भी हुए। तो ऐसा नहीं है कि 7.5 ख़राब ही है, 7.5 अच्छी है। लेकिन 7.5 जो है इट्स अ चैलेंजिंग पीरियड। वो चैलेंजिंग पीरियड इसलिए है कि शनि को टिपिकली ये माना जाता है, शनि रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ डिसिप्लिन। वो आपसे मेहनत भी कराएगा लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देगा, लेकिन बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा।
2: चलिए, बहुत आशा करते हैं 7.5 के बारे में हमारे श्रोताओं की भ्रांतियां जो हैं निश्चय ही दूर हुई होंगी। और संजीव जी, हमारे श्रोताओं का एक्चुअली हमको काफ़ी पहले करना चाहिए था, बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, कुछ के प्रश्न भी हैं,
1: जरूर
2: तो हम हमारे मेहमान के सामने रखेंगे। तो शुरुआत हमारे जो है प्रदीप जी से ही हुई है, कार्यक्रम का शुभारम्भ उन्होंने लिखा है, धन्यवाद। यतीन गुप्ता जी कहते हैं नाइस स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम विद संजीव जीज वॉइस। फिर प्रदीप जी लिखते हैं क्या बात है उपाध्याय जी, कार्यक्रम का विस्तृत विवरण, धन्यवाद प्रदीप जी। ऋचा जी लिखती हैं सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं जगदम्बे, आज का भजन बहुत सुंदर है और सामयिक भी था, महान कलाकार नाना पाटेकर जी को समर्पित श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी बेहद भावपूर्ण और सराहनीय। शैलजा जी लिखती हैं नाना पाटेकर का भावभीनी स्वागत हिंदी समाज का एक सम्मानित व स्मरणीय उत्सव था, लगभग 25 वर्ष पूर्व उनका हृदय स्वभाव व विनम्रता ने सभी को दर्शकों का हृदय छू लिया था, अतिथियों में वह प्रमुख अतिथि जो जन्मभूमि से आया है सुनकर यह भाव विभोर हो गए थे, बॉलीवुड के इस विशिष्ट कलाकार को सूर्यास्त वेदनापूर्ण है भावभीनी श्रद्धांजलि। रंजना जी लिखती हैं ग्रेट प्रोग्राम डेडिकेटेड टू वेटरन एक्टर नाना पाटेकर, वेरी थॉटफुल एंड टचिंग। शैलजा जी लिखती हैं पंकज जी की वार्ता दिलचस्प तो है किंतु जीवन भर यह एक रहस्य ही बना रहता है, अधिकतर जनमानस के लिए पूर्ण रूप से ज्योतिष विज्ञान पर निर्भरता कितनी उचित है, नक्षत्रों के अनुसार भारत का भविष्य क्या है। अच्छा, ये भारत के भविष्य की बात शैलजा जी ने की, तो ये व्यक्ति की जन्म पत्री की तो हम लोग बात करते हैं, लेकिन काफ़ी ज्योतिषाचार्य जो हैं वो देश के बारे में भी बात करते हैं कि भारत की जन्म पत्री कैसी है, तो इस बारे में कुछ संक्षिप्त रूप से बताना चाहेंगे?
3: देखिए, एस्ट्रोलॉजी में ना दो चीज़ें होती हैं, एक जो हम बोलते हैं फलित, जिसमें कि हम आमतौर पर नेटिव्स या पर्सन के बारे में बात करते हैं, एक होती है मंडेन एस्ट्रोलॉजी, जिसमें हम कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं, स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, ग्लोबल उस पे लेवल पे बात करते हैं। बिल्कुल सही, ऐसा होता है। और अभी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी कल ही मेरी एक क्लास थी, उसके अंदर हमारे जो प्रोफेसर थे उन्होंने हमें मंडेन और इंडिया के चार्ट के बारे में बात कर रहे थे। अब उनके हिसाब से उनका कहना ये है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स इंडिया के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेंगे, और अभी क्योंकि वो एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है तो उसमें काफ़ी चीज़ें, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं। हालांकि यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वो दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मंडेन एस्ट्रोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और उसके भी अपने प्रिंसिपल्स हैं। बिल्कुल, आप कंट्री लेवल पर प्रिडिक्शंस कर सकते हैं।
2: तो भारत के लिए आपने अगले 6 महीने चुनौतीपूर्ण बताए, लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमको तो पिछले 2 साल चुनौतीपूर्ण लग रहे हैं, क्योंकि निफ्टी जो है कल की तारीख में जो बंद हुआ है वो पिछले 2 साल का लोएस्ट पॉइंट है। तो आशा करते हैं 6 महीने बाद जो है सुधार होगा,
1: बिल्कुल
2: आपकी भविष्यवाणी सही निकले।
1: तो उपाध्याय जी, एक और स्पॉन्सर का संदेश सुन लें।
2: बिल्कुल, उसके बाद फिर हम संदेश जारी रखेंगे।
5: लव ऑथेंटिक करीज but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian-made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters. Authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
1: श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश।
2: तो श्रोताओं की प्रतिक्रिया जारी रखते हैं। तो हमारे श्रोता हैं अनिल शर्मा जी, ये भारत में हैं, और इनका संदेश है, नमस्कार दर्पण टीम, आज काफ़ी समय के बाद दर्पण का सुंदर प्रोग्राम सुन पा रहा हूँ। अनिल जी, आपको विशेष धन्यवाद, और विशेष रूप से क्योंकि अभी तक तो 4:30 घंटे का फ़र्क था, अब 5:30 जो भारतीय समय से संजीव जी सवेरे 3:30 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाता है, तो अनिल शर्मा जी को निश्चित रूप से साधुवाद, इतना सवेरे उठकर हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, और यह उनका हम लोगों के प्रति प्रेम दर्शाता है कि हमारे कार्यक्रम को भारत ऑस्ट्रेलिया के बाहर भी कितना पसंद किया जाता है। शैलजा जी लिखती हैं, पंकज जी, क्या आपको अपने जीवन की विषम परिस्थितियों का ज्ञान पहले ही हो जाता है? आप इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, और AI का प्रभाव ज्योतिष विज्ञा पर, इस पर भी संक्षिप्त रूप से कुछ बताइए।
3: बहुत बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, और पहले मैं AI का थोड़ा सा जवाब दूंगा। AI इज डेफिनेटली हैविंग अ बिग इम्पैक्ट ज्योतिष में भी, सभी जगह के ऊपर, और AI की वजह से मुझे लगता है कि क्या होगा कि जो ज्योतिष आज की तारीख में इसको एज अ मनी स्पिनिंग या पैसा कमाने के लिए जो क्विक रेमेडीज़, क्विक सॉल्यूशन टाइप के जो चीज़ें करते हैं, उसका बहुत असर पड़ेगा। लेकिन AI जो है, जो सीरियस एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा वरदान साबित होगा, क्योंकि AI की वजह से अब हमारे जो पुराने शास्त्र हैं वो 1000-1000 पेज के 2000 पेज के हैं, जिसके बारे में आप सब कुछ याद नहीं कर सकते हैं, तो AI कैन एक्चुअली प्रिपेयर अ समरी, और वो आपको एक हेल्प कर सकता है एक सेक्रेटरी की तरह, और उसको आप AI को यूज़ करके यू कैन गेट अ वेरी बिग हेल्प इन द एनालिसिस, तो उसका डेफिनेटली फ़ायदा होगा। जहाँ तक मेरा पर्सनल विषम स्थितियों वाली बात है, देखिए मैं ये बात में बहुत पूरी तरह से विश्वास करता हूँ कि जो भी मेरे लाइफ में होता है वो मेरे कर्मों की वजह से होता, और जो मेरे को दुख, जो मेरे को चैलेंज फेस करने पड़े हैं वो मेरे कर्मों की वजह से हैं। कुंडली एनालिसिस से एक इंडिकेशन डेफिनेटली मिल जाता है कि भाई अभी थोड़ा सा रफ पैच आएगा लाइफ में, और उसके लिए मैं पहले से तैयार हो जाता हूँ। देखिए, इसको मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, वेदर फोरकास्ट। अगर वेदर फोरकास्ट है कि रेन होने वाली है तो आप अम्ब्रेला लेके चलोगे, अगर आप रेन फोरकास्ट देखा उसके अभी अम्ब्रेला लेके नहीं चले तो आपको बारिश में भीगना ही पड़ेगा। वही चीज़ कुंडली में है कि कुंडली कैन फोरकास्ट कि भाई आपके साथ में चैलेंजेस आने वाले हैं, कर्म का आपके प्रोफेशन में चैलेंजेस हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में चैलेंजेस हो सकते हैं, आपके फाइनेंस में चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आप उसको यूज़ करिए और मेरे ख्याल से वही एक इसका सही यूटिलाइजेशन होगा।
2: चलिए, बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दिया। तो एआई को जो है एज ए असिस्टेंट ही यूज़ करें, और एज ए मास्टर जब आप यूज़ करना शुरू कर देंगे तो फिर आप उनके हाथ में खेलेंगे और फिर नुकसान के लिए तैयार रहिएगा। और आपने जो कर्म की थ्योरी बताई वही हमारे अगले संदेश में अनिल शर्मा जी ने भी कही है कि पंकज जी ने कर्म की प्रधानता के बारे में बहुत सटीक बात की है, यह बात प्रत्येक प्राणी के लिए बहुत सटीक बैठती है। संभवतः कर्म का स्तर नक्षत्रों को प्रभावित करता ही होगा, कहीं ना कहीं भाग्य भी कर्म के अनुसार ही काम करता होगा। लीला तिवारी जी कहती हैं, सुविचार से लेकर भजनों का संकलन और ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत रोचक और प्रेरक है। प्रदीप जी कहते हैं, कुछ लोग नाड़ी दोष की भी बात करते हैं। हाँ, थोड़ा संक्षिप्त में नाड़ी दोष की एक मुख्य मूल विषय था, इस पर भी हमको थोड़ी बात करनी चाहिए। नाड़ी दोष जो होता है ये क्या, इसके बारे में भी बहुत जातकों को डराया जाता है कि अरे जैसे लड़का लड़की की जन्म पत्री में आएगा, अरे लड़का या लड़की में नाड़ी दोष है, इनका विवाह नहीं हो सकता। तो कुछ इस बारे में भी थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए।
3: हाँ बिल्कुल, देखिए नाड़ी दोष क्या है कि इस पार्ट ऑफ, जैसे हम लोगों ने बात करी थी कुंडली मिलान की, तो कुंडली मिलान में एक नाड़ी एक कॉम्बिनेशन है उसके अंदर। और पुराने टाइम में जो नाड़ी दोष जो था या नाड़ी का जो कॉम्बिनेशन था वो ऑफ स्प्रिंग्स के लिए, बच्चों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता था। लेकिन अगेन देश टाइम और एरिया के हिसाब से चीज़ें चेंज होती जाती हैं। आज से 2000 साल पहले जो चीज़ें चलती थी वो आज थोड़ी डिफरेंट हो गई है। आज की तारीख में साइंस ने, मेडिकल ने इतना इम्प्रूव प्रोग्रेस करी है, आज की तारीख में IVF अवेलेबल है, आपके पास सिजेरियन अवेलेबल है, आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिसकी वजह से जो सपोर्ट है मेडिकल सपोर्ट मिल सकता है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आज की तारीख में नाड़ी दोष को बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देते, क्योंकि उसको वेटेज ना देने का कारण ये है कि मेडिकल एडवांसमेंट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि प्रोजेनी में बहुत सारी हेल्प, मेडिकल हेल्प अवेलेबल है।
2: चलिए, ये एक और भ्रांति आपने श्रोताओं, क्योंकि काफ़ी श्रोता लोग इससे डरे रहते हैं। और ऋचा जी कहती हैं, ज्योतिष का टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे प्रश्न अजय जी और उपाध्याय जी, धन्यवाद ऋचा जी। यतीन गुप्ता जी कहते हैं, वेरी गुड डिस्कशन ऑन ज्योतिष। राजीव निगम जी कहते हैं, नमस्कार, आशा करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। लीला तिवारी जी कहते हैं, हास्य कविता बहुत अच्छी लगी। और इन्होंने बताया है कि 11 अक्टूबर को विश्व बालिका दिवस भी होता है। उन्होंने कविता भी कुछ पंक्तियां लिखी हैं, उसी घर में होती हैं बेटियां, रोशनी हर पल रहती है वहां, गुलाबी ठंडक होती हैं बेटियां। बहुत सुंदर लीला तिवारी जी। ऋचा जी कहती हैं, प्रदीप जी का फिल्म ज्ञान PhD स्तर का है, दर्पण कार्यक्रम का अनवरत प्रयास प्रशंसनीय, श्रोताओं को के जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालने का भरपूर प्रयत्न है। शैलजा जी, हमने जो कुछ भी सीखा है आप ही से सीखा है, आपका बड़प्पन है जो हम लोगों का उत्साहवर्धन आप इसमें करते हैं। जो ज्योतिष विज्ञान ऑस्ट्रेलिया किन विश्वविद्यालयों में उपलब्ध है, विश्व स्तर पर इस विज्ञान का कितना आदान प्रदान व विचार विमर्श होता है, इसका उत्तर तो मेरे ख्याल से जैन साहब दे ही चुके हैं, इसमें कुछ और अतिरिक्त जोड़ना चाहेंगे?
3: ज्योतिष एज अ फॉर्मल सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल नहीं है, जहाँ तक मेरे को पता है। ऑस्ट्रेलिया में तो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, इंडिया में भी बहुत ही लिमिटेड यूनिवर्सिटीज हैं। BHU में डेफिनेटली एक इसका फॉर्मल कोर्स अवेलेबल है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं है।
2: चलिए, तो राजीव निगम जी कहते हैं, नाइस इन्फॉर्मेशन ऑन लेटेस्ट न्यूज़, आई एम हैप्पी टू लिसन अवर दर्पण प्रोग्राम रेगुलरली फ्रॉम एडमंटन। रीता पांडे जी कहती हैं, वेरी गुड एनालिसिस ऑन एस्ट्रोलॉजी। तो संजीव जी, ये तो कार्यक्रम समय पंकज जी को लगता फिर बुलाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं।
4: जाने से पहले एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जो काफ़ी लोग जो है रुचि रखते हैं सवाल में, क्या मनुष्य जब इस जीवन में आता है तो अपने सांस गिन के आता है, तो जीवन का अंत होता है, वो ज्योतिष विद्या उसके बारे में पहले से बता सकता है कि नहीं?
1: इसका उत्तर संक्षिप्त में देंगे, डिटेल के लिए अगली बार जब पंकज जी आएंगे तब।
3: देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका हाँ या ना में जवाब देना बहुत मुश्किल है। वो इसलिए हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसके जो हमारे गुरु हैं सबसे बड़े गुरु, उनको के एन राव का नाम, जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों ने सुना होगा के एन राव, उन लोगों का उनका ये कहना है कि किसी की लाइफ के बारे में प्रिडिक्शन करना कि कितने साल कोई आदमी रहेगा या नहीं रहेगा बहुत ही मुश्किल काम है। और वो ये कहते हैं कि एक अच्छा ज्योतिषी कभी भी लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में प्रिडिक्शन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए लाइफ एंड डेथ जो है वो आपके कर्मों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसका हाँ, आप जो कुंडली एनालिसिस से आप एक आइडिया ले सकते हैं कि भाई उसकी आयु लंबी होगी या छोटी होगी। तो लंबी और दीर्घ आयु का मतलब है कि 0 से 33 साल, 33 से 60 साल, 60 से 90 साल, वो आप एक आइडिया ले सकते हैं। लेकिन कोई 60 साल रहेगा या 90 साल रहेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है कि संभव है, लेकिन मैं भी अभी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं तो सीख ही रहा हूँ।
4: चलो नहीं, पर कहते हैं कि कुछ ज्योतिषी है जो हाँ वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं बिल्कुल टाइम और डेथ की, जो लिखा होता है कि प्रमाण पत्र के पीछे लिखा था, बाद में जब उनकी मृत्यु हुई तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर लिखा गया था।
3: बिल्कुल ऐसे ही बातें मैंने भी सुनी है, बिल्कुल सही है, लेकिन अब हो सकता है कि उनके अंदर कुछ एक स्पेशल इंट्यूशन, स्पेशल पावर हो।
2: चलिए पंकज जी, सवाल बहुत हैं और जैसा कि कार्यक्रम के मध्य में हम लोगों को एहसास हो गया था कि 2 घंटे का कार्यक्रम इस विषय के लिए छोटा है, और आपने हमारे श्रोताओं का ज्ञानवर्धन किया और निश्चय ही हमारे कुछ श्रोताओं में इस विषय के प्रति रुचि जागृत हुई होगी और वो इसमें आगे करना चाहें तो उसका मार्ग भी पंकज जी ने सुझा दिया है। तो हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत धन्यवाद, और हमारा कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और अब कार्यक्रम समापन का समय आ गया है। उम्मीद है आज की संगीतमय, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति

0: कार्यक्रम को और खास बनाया। संजीव जी अब तो बस आखिरी
1: गाने बिल्कुल चलाना होगा। चलते चलते तो श्रोताओं
0: एक अशोक चक्रधर की एक छोटी सी कविता है, वो हो जाएगी पूरी तो उसको चला देते हैं, श्रोताओं के लिए छोड़े जा रहे हैं। और
2: संत 63 में विकास जी में पहली बार लाल किले के कवि सम्मेलन में आया था और जिन नामों को प्रायः पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा जाता है उनके साथ बैठकर उनका स्पर्श करने का अनुभव मिला है, उनके साथ छोटी अपनी कविताएं सुनाने का भी मौका मिला है। लेकिन इस मोड़ पर आकर उम्र का जो पड़ाव है, मैंने सोचा कि अब गया जाके बोध क्या करना, इतने अंतर विरोध क्या करना, इतनी जंजाल जिंदगी जी है अब सरल या सुबोध क्या करना। शांत रहना नहीं आसान मगर, शांत रहना नहीं आसान मगर, अब किसी पर भी क्रोध क्या करना, अब किसी पर भी क्रोध क्या करना, खूब निष्कर्ष मिल गए मुझको और जीवन का शोध क्या करना। अपने अंदर भी भला क्यों झांकूं, अब नया आत्मबोध क्या करना। और एक आसान सी बात है कि काम करना है तो करवा दो मियां, काम करना है तो करवा दो मियां, लिख के दूं सानुरोध क्या करना। सभी ने काम करवाना है तो करवा दो मियां, लिख के दूं सानुरोध क्या करना। और मैं आपको एक बात बताऊं कि रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव जब 75 वर्ष के हुए तो उनका एक आश्रमवासी उनके पास आया और उसने कहा कि देखिए चार आश्रम हैं, बचपन आपका कैसा बीता हम जानते हैं, तरुणाई में आपने क्या किया हम जानते हैं, वानप्रस्थ भी आपका बीत गया है, संन्यास में आप प्रवेश करने वाले हैं, तो क्या आप कल से तपस्वी हो जाएंगे। तो उन्होंने बड़ी मजेदार बात कही, उन्होंने कहा कि देखो तपस्वी तो हम हो जाएंगे लेकिन हमारे साथ एक तपस्वी नहीं होनी चाहिए, बिना उसके नहीं जाएंगे। तो मेरी तपस्विनी अभी 72 साल की है, तो मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के ही मामले में कहता हूं, अपने आप को उनके समानांतर तो क्या रखूंगा लेकिन उनके चरणों में रख के कहता हूं कि जो मेरी जिंदगी से जाता नहीं, टैगोर जी के कथन को याद रखिएगा, जो मेरी जिंदगी से जाता नहीं ऐसे रस का विरोध क्या करना। जो मेरी जिंदगी से जाता नहीं ऐसे रस का विरोध क्या करना, लेकिन न मुड़ के देखूं न रुकना है मुझे, न मुड़ के देखूं न रुकना है मुझे, बन के आत्मावरोध, अपना ही अवरोध बन के आत्मावरोध क्या करना। लेकिन एक बात तय है और ईमानदारी से कहता हूं, बहुत सारे पदों पे मैं रहा हूं, कोई पद चाहिए नहीं मुझको सर, कोई पद चाहिए नहीं मुझको, चुन भी लो निर्विरोध क्या करना।